0: जो मैंने आंसर की देखी 3 मई को उस लड़के के पास, तब कंफर्म हो गया था, इसलिए मैं उसके ऊपर अड़ा रहा कि पेपर 100% लीक हो चुका है। क्या करते थे, अमाउंट जिसने पेमेंट पे कर दिया उसके बाद ये जो QR कोड है वो QR कोड को जो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको QR कोड भेज देते थे, और वो QR कोड मिलने के बाद वो स्कैन करने के बाद इस वो जो PDF फाइल है जो नीट का पेपर है उसका ये पासवर्ड बोल सकते हैं, स्कैन करने के बाद तुमको पेपर मिल जाएगा।
1: अच्छा, ये सब जिसने पैसे दिया सिर्फ उसी को मिलना
0: चाहिए, उसी को मिलेगा जिसने पेपर दिया उन्हीं को मिलेगा। एग्जाम 3 मई को था, एग्जाम के 1-2 महीने पहले उसकी रकम बहुत ज्यादा थी, मतलब 25 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसी रकम थी, बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है मतलब 1 वीक बिफोर एग्जाम उसका रेट मतलब 1 लाख तक आ चुका था, मतलब 30,000 50,000 60,000 ऐसे जितना जितने लोगों तक पैसा ले सकते हैं उतना ट्राई किया है।
2: And to discuss the latest developments in the NEET paper leak probe, NDTV spoke to the member of the Radha Krishnan Committee and educationist Pankaj Bansal. Listen.
3: We do know that one of the major recommendations of the committee was to conduct the exams from a paper-based mode to online or digital. Do you feel that this, you know, today it's been announced, but this announcement should have come earlier so that another crisis could have been averted?
4: See, in hindsight, we all are smart people, right? That's what we would like to believe, that this could have happened, that could have happened. But please understand, this is the one of the most important high-stake tests that happened in the country. But NTA, the body that we all start critiquing immediately for the problems that happened, conduct over 2 crore tests, if I remember correctly, and over 15 high-stake tests. It's not an easy job. Mm-hmm. 22 to 25 lakh students take the test for NEET, mm-hmm. that too simultaneously. It is very easy to say that the committee had recommended that we should consider going towards computer-based testing, which is not necessarily online or digital, but computer-based testing, mm-hmm. so that the dependency on paper and the movement of paper reduces or diminishes. That happened. Having said that, there are so many people, and there is a societal question that comes up, where people say that some of the students will get in a disadvantageous position because they may not be exposed to computers, mm-hmm. which is in today's time and age is not a very logical point to make. But still, we are a democracy. We have to take care of everything. So I think I'm very glad to hear that today morning Minister Pradhan announced that next year we will move to computer-based testing. So it should eliminate 95% of the problems anyway. Mm-hmm. Because this exam mafia is able to thrive and survive for one big reason is that there are so many gaps on the paper movement, from printing to transportation to opening of papers to all those things. All that will get away. And this is, it'll be a big dent to exam mafia. Still, there'll be vulnerabilities. And I'm sure that NTA and its new avatar with the new leader on board will be able to take care of them.
2: And the recording of calls to a woman student at the Lucknow University brought to the fore her continued harassment by an assistant professor in the name of leaked examination papers. Among two angles pertaining to the case is the objectionable and derogatory phone conversation wherein undue favors were sought from a woman student, from a female student. Other than that, the angle is that of an alleged paper leak, an issue that has gained national significance as CBI took over the probe into the NEET UG 2026 paper leak.
5: किस दिन मिलने आओगे आपके, तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके।
6: सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था।
5: अच्छा, तो मिलने नहीं आओगे एक बार भी?
6: सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में घर पे रुकना इम्पोर्टेंट
5: है।
7: प्रभारी निरीक्षक हसनगंज के द्वारा थाना हाजापुर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, साथ ही जो प्राध्यापक हैं उनको हिरासत पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित हैं। प्रकरण की विवेचना ACP महानगर के द्वारा की जा रही है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित हैं।
2: And in a major political showdown over the NEET paper leak controversy, the opposition has launched a sharp attack on the government, alleging a massive failure in protecting the integrity of the examination system. Leader of opposition Rahul Gandhi has accused the authorities of ignoring repeated warning and failing lakhs of aspirants who worked hard for one of India's most competitive exams. Rahul Gandhi also went further to demand resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On the other hand, government has defended its position, stating that a detailed investigation is underway. Strict action is being taken against all those involved. The government has reiterated that reforms will be introduced in the examination system to prevent such instances in the future, even as political tensions escalate between the ruling side and the opposition. The Political Voice is on the story.
8: अपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
9: चुनौती है निश्चित रूप से, जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा।
2: With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आप मसाला।
5: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
8: Welcome, this is Reet Kaur Sahani, and you're watching NDTV. You've got an action-packed show lined up just for you, but let's first take you through the headlines of the hour. The NEET paper leak controversy has triggered nationwide outrage, with students demanding accountability and answers over alleged manipulation of one of India's biggest entrance exams. As the CBI probes the wider network and arrests mount, including teachers appointed by the NTA, questions are now being raised over possible insider access and the credibility of the examination system itself. The NEET paper leak row has now snowballed into a major political flashpoint, with the opposition mounting pressure on the centre over alleged failures in safeguarding the examination process. From calls to overhaul the NTA to demands for the Education Minister's resignation, protests and political attacks are intensifying as students continue to seek justice. Well, the stage is set for the swearing-in ceremony of the incoming Keralam Chief Minister V.D. Sathesan on May 18th, even as the Congress leadership continues deliberations over the cabinet lineup. With allies pressing for representation and the High Command yet to give its final nod, political negotiations are still underway behind the scenes. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has sparked a fresh political debate with the proposed incentive scheme for larger families. The move, aimed at addressing concerns over declining population rate, promises cash benefits for couples having more children. But the opposition has slammed the proposal, calling it populist politics. Prime Minister Narendra Modi's visit to Netherlands has highlighted the growing depth of India and Dutch ties, with focus on trade, technology, culture and strategic cooperation. From high-level talks with the Dutch leadership to the return of the Chola-era artefacts, the visit showcased a blend of diplomacy and heritage before the Prime Minister heads to the Nordic summit. US President Donald Trump has issued a fresh warning to Iran, saying that it will be a very bad time for Tehran if a new agreement is not reached. While Trump claimed Iran is willing to negotiate, Tehran hit back by expressing deep distrust towards the Trump administration, once again exposing sharp tensions between the two sides.
9: Presented by Canara Bank. Together we can.
8: Meanwhile, we have some breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. We're tracking the latest updates coming in from the national capital. We're understanding that CNG rates have been increased by rupees 1 from today. That's right, in Delhi, per kg CNG will now cost about rupees 80. In Noida and Ghaziabad, per kg CNG will now cost about rupees 88.7. Remember that this is the second increase in prices in just 2 days. Earlier on the 15th of May, the CNG prices were increased to about rupees 2 per kg. That's the latest update that we have for you from this hour. We're understanding that there seems to be an increase in the fuel. Now, CNG rates have been increased by rupees 1 from today. My colleague Tejshree also joins us on the broadcast with the latest updates coming in. Tejshree, walk us through what exactly has been the price rise and how essentially does this impact the ordinary citizen?
10: Well, see, it was on 15th May when the CNG price were increased to two rupees per kg. And now after 2 days, the price have been again hiked by rupees 1. So now if we talk about Delhi, then the cost of CNG would be 80.09 rupees. And if we talk about Noida, Ghaziabad, then the CNG cost will be 88.70. And as we see, this is the second price rise of CNG in the past 2 days. But also, in fact, we have been seeing that how, Prime Minister has been making several appeals to the people to reduce the use of a fuel, minimize the use of a vehicle, use public transport. And in fact, not just that, but the appeal that's been made by the Prime Minister, we have also been seeing that not just PM, but also, in fact, these appeals have also been accepted largely by the several ministries, in fact, by several chief ministers of the state, by the officials as well. The cavalcade have also been reduced just to 2 to 3 cars. There are many...
11: We have Mr. Kuldeep Kumar. He's an Aam Aadmi Party MLA. He's joining us on the broadcast. Let's also try and get a sense of what he makes of this. Sir, CNG ke rate increase hui hai 1 rupaye se aaj and Delhi mein jo ab rate hai wo 80 rupaye hoga. Is par aapka kya kehna hai?
12: देखिए सीएनजी तो आम आदमी सीएनजी गाड़ी चलता है भाई सीएनजी गाड़ी आदमी सेकंड आई क्योंकि उसको पता है कि मैं इतनी कॉस्ट बेयर नहीं कर पाऊंगा जो पेट्रोल की ज्यादा है डीजल की ज्यादा है लेकिन अब तो सीएनजी की रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं तो आम आदमी की जेब पर लगातार भार पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की गलत विदेश नीतियों की वजह से सरकार की आज ही आम आदमी के ऊपर ही बोझ पड़ रहा है आज दिल्ली और देश भर के लोगों के ऊपर जो पेट्रोल डीजल सीएनजी की मार पड़ रही है और उससे जो चाहे वो दूध महंगा हो रहा है चाहे वो आटा महंगा हो रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार के पास कोई उसको साधने का उसके कोई जरिया नहीं है प्रधानमंत्री जी विदेश निकल चुके हैं जैसे देश के ऊपर संकट आता है प्रधानमंत्री जी विदेश चले जाते हैं और प्रधानमंत्री जी फिर देश को संकट में डाल के विदेशी दौरे पर जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज नौटंकी रोज दिखावा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये रेट अभी और ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं इसलिए उन्होंने नौटंकी और ड्रामे भी शुरू कर दिए हैं लेकिन जनता अब जाग रही है जनता के ऊपर ही महंगाई की मार बहुत स्पीड से पड़ रही है
11: सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी है उस पर जोर पड़ रहा है पर मेरे को ये भी समझना है क्योंकि एक्सपर्ट्स भी ऐसा कह रहे हैं कि बाकी देशों से कंपैरिजन में इंडिया ने बहुत बेटर करा है बिकॉज गवर्नमेंट ने जो प्राइस हाइक है वो अब्जॉर्ब करा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम और उसके बाद सिटीजन्स पे बहुत बाद में प्रभाव पड़ा है
12: देखिए बहुत बेटर तो किया है भाई दूसरे देश राजनीति के चक्कर में देश को संकट में डालते हैं दूसरे देश तो जिस समय पर ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा था उस समय पर 5 राज्य चुनाव चल रहे थे इसलिए मोदी जी ने सब देश से सब कुछ छुपा के रखा लोगों को नहीं बताया और उस समय तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े क्यों नहीं बढ़े क्योंकि चुनाव चल रहा था उस समय सीएनजी के दाम नहीं बढ़े क्यों नहीं बढ़े क्योंकि चुनाव चल रहा था तो चुनाव की वजह से देश को संकट में डालने का काम मोदी जी ने किया उनकी गलत विदेश नीति की आज जो हर्जाना है वो हम लोग भुगत रहे आप सोचिए जब रशिया से सस्ता तेल आ रहा था और उस समय पर ये सारी कंपनियां 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे कमा के बैठी हुई हैं उस समय प्रधानमंत्री जी को ये बात याद नहीं आई कि कंपनी ने 10 लाख करोड़ ज्यादा कमा लिया मैं जनता का पेट्रोल का पैसा कम कर दूं डीजल का पैसा कम कर दूं सीएनजी का पैसा कम कर दूं उस समय उनको ये बात याद नहीं आई क्योंकि उस समय वो उन कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे थे और आज भी प्रधानमंत्री जी कंपनियों को बचाने के लिए कंपनियों का फायदा मुनाफा बढ़ाने करने के लिए ये सारे खेल किए जा रहे हैं जबकि मैं फिर आप स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि सरकार आज अमेरिका देशों से महंगी तेल खरीद रही है लेकिन आज भी रशिया से तेल नहीं खरीद पा रही क्योंकि उसको ट्रंप ने जो वहां के राष्ट्रपति हैं ट्रंप की परमिशन उनको नहीं मिल पा रही है ट्रंप की परमिशन की
11: Thank you so much, Mr. Kuldeep, joining us and sharing those updates with her. We also have, in fact, another person joining us on the phone line. We have Abhishek Dutt, who's joining us from the Congress Party. You know, sir, I want to understand, there seems to be an increase in the CNG price. It's been, of course, we've been seeing this across diesel and petrol as well. What exactly do you make of this?
13: See, it is very shameful. Just every time the elections get over, the Bharatiya Janata Party starts increasing the prices. And CNG is a public transport. The entire city

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: उनका तो ज़्यादा मन राजनीति में लगता है, उनका मन सरकारें तोड़ने में बनाने में लगता है। ये उनकी भूमिका पहले भी रही, राजस्थान के लिए भी रही है, मैं मालूम है।
1: देखिए, ये एक चुनौती है निश्चित रूप से। जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा।
2: दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द नीट क्वेश्चन पेपर इज लीकिंग। सो फार सो मेनी क्वेश्चन पेपर लीक। दिस गवर्नमेंट इज एक्सपर्ट इन लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री। How many times we raise this issue? We need a foolproof system, but they are not working on it. That is why this situation arises. Everything has happened because of the incapability of the education minister. Where he should step down immediately. He should take the moral responsibility and he should step down immediately.
3: We are totally opposed to these NEET exams from the beginning. This should be permanently abolished. This year, what has happened? Due to the leak of the question papers, the exams could not be conducted, and 22 lakh students who prepared themselves for months, they were disappointed. So who is responsible for this? Who is responsible? Therefore, the union minister, the particular portfolio education minister, Mr. Dharmendra Pradhan, should submit his resignation. He should not continue as the education minister.
4: बहुत ही गंभीर अफसोसजनक बात है कि नीट का इस तरह से जो पेपर है वो लीक हो रहा है। इसकी पूरी पूरी जवाबदारी सरकार की बनती है। सरकार ने 23 लाख स्टूडेंटों के करियर के साथ खिलवाड़ किया। एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्जाम कैंसिल कर दिया, हमने सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दी। अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट एमबीबीएस बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
5: Well, let's track more updates coming in, especially on the probe front in the NEET UG 2026 paper leak case. The CBI has arrested about 9 accused. 3 of them are believed to be the kingpin. Retired chemistry professor PV Kulkarni, Manisha Vagmare and Manisha Gurunath Mandare. The CBI probe has uncovered a multi-state NEET leak racket in which question papers were allegedly shared via Telegram PDFs. Secret coaching classes were conducted in Pune, which are also now under the scanner, where an NTA-appointed teacher is among the accused who allegedly leaked papers to selected candidates. Now, the CBI investigation has revealed that the exam mafia accessed the question papers through alleged insider links at the NTA, after which middlemen contacted aspirants' families and finalized deals worth lakhs. The papers were then sent via Telegram PDFs right before the exam. Students were brought to a secret coaching classes in Pune, where they were made to memorize the answers. Shockingly, up to 140 of the 180 questions matched the final paper exam. Let's now take you to Madhya Pradesh. Days after the Indore bench of the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhotshala in Dhar district was a temple of Goddess Saraswati, ASI granted Hindus an unrestricted access to the monument for worship and other purposes. The ASI, remember, has withdrawn its 2003 order. Hindu worship rites are now fully restored and entry timings will now be decided jointly. Revoking its 2003 order, the ASI has reaffirmed it as a protected monument and the worship access will continue without any restrictions. Meanwhile, after High Court's order, India is now seeking the return of the Vagh Devi, which essentially is the Saraswati statue, which is currently at the British Museum in London. Now, this statue is believed to be originally belonging to the Bhotshala complex in Dhar of Madhya Pradesh.
6: इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये ASI का protected monument है, और Archaeological Survey of India के किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके अंदर चर्च, इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है। ये भोजशाला है या मस्जिद है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था, उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहां पर मंदिर का कोई प्रमाण हमें

0: behind me, you can see the visual of this CNG pump station where I'm currently standing right now, and I'm going to get few voices on ground. I'm going to speak to the cab drivers, the auto drivers over here, that how it's going to impact their pockets. Because if you see, they are at the receiving ends. अच्छा मुझे बताइए क्या नाम है आपका
1: आर्यन चौधरी
0: चौधरी साहब ये बताइए कि सीएनजी का दाम फिर आज 1 रुपये बढ़ गया कितना पॉकेट पैसा पड़ा आपको
1: रेट तो बढ़े जा रहा है ना मार्केट में काम है रेट बढ़ने को
0: मार्केट में काम भी नहीं है
1: मार्केट में काम भी नहीं है पहले के अपेक्षा काम भी घट गया है और अभी रेट भी नहीं है उस ढंग का कुछ बच नहीं रहा है न खाने को मिल रहा है पहले ढाबे का खाना सस्ता था अभी पहले 80 रुपये में खा लेते थे अभी 120 रुपये 150 रुपये तक खाने का लग रहा है
0: तो एक काम कीजिए अगर मान लीजिए कि अगर सीएनजी का दाम बढ़ रहा है तो आप जो आपकी सवारी है उसका भी दाम थोड़ा बढ़ा दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा थोड़ा
1: वो तो कंपनियों के ऊपर है वो कंपनी हम लोग ऐप
0: क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले
1: तो कुछ नहीं कर रहे हैं वो तो इसी रेट में गाड़ी चलवा रहे हैं
0: तो नुकसान तो आपको सहना पड़ा होगा
1: कुछ बच ही नहीं रहा है
0: कैसे चला रहे हैं घर परिवार
1: सिर्फ अपने पेट पे चल रहा है गाड़ी घर परिवार को तो छोड़ दीजिए अपना पेट पला रहा है बस
0: क्या आह्वान क्या करते हैं आप सरकार से कुछ आह्वान है आपकी कोई रिक्वेस्ट कोई डिमांड
1: रेट बढ़ाया जाए हम लोगों का और क्या
0: हम लोग एज यू सी ओवर हियर द पीपल ओवर हियर आर सेइंग दैट इट्स इंपैक्टिंग देयर पॉकेट्स एज वेल एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू गेट मोर वॉइसेस ओवर हियर अच्छा मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका
2: सर मेरा नाम अनूप है
0: अनूप भाई कैसे कितना असर पड़ रहा है फिर सीएनजी का दाम फिर बढ़ गया दोबारा
2: सर बढ़ तो रहा है थोड़ा देर समय पहले बढ़ा था अब फिर 2-2.5 रुपये का समथिंग बढ़ गया है सर क्या अब काम तो करना ही पड़ेगा सर बढ़ने से अब क्या करेंगे
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आह्वान किया था कि कम से कम जो है वो अपने गाड़ियों का इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्या कहना है आपका इस बारे में
2: सर वो तो बात सही है लेकिन हम लोगों को रोजी रोटी के लिए काम तो करना पड़ेगा ना सर
0: Here you see the impact can be seen on the streets. If you see the agriculture or transport or even the commuters over here in the National Capital Region has been deeply impacted by this. And right now what we have seen that 1 more rupee has increased in the CNG prices, which is basically impacting the commuters over here in the National Capital
3: right.
0: Region.
3: Akhil, stay on with us. Let's talk about that price hike. Let's talk about how more expensive has it become to be here in the National Capital Region. We're talking about the Delhi NCR region where the CNG prices have gone up from 77 rupees per kg. Now in Delhi, you'll have to pay 80 rupees per kg. If you're in Gurugram, earlier you were paying 82.12 for a kg of CNG. Now that's gone up to 85.12. And if you're here in Noida, earlier, from 85, that is what it costed for 1 kg of CNG. Now that's gone up to 88.70. In Ghaziabad, it is also the same rate of 88.70. Earlier on as well, it was 85.07, just like it was in Noida earlier. Akhil, with us again. Akhil, when we talk about the price hike, it's expected to directly affect auto rickshaw drivers. You know, it'll increase the rates as far as taxi fares are concerned also across the, Delhi NCR region. Talk us through the demands that are being made, particularly by the drivers' union.
0: Absolutely. I'm going to give you the voices from the ground zero that how the truck drivers are being impacted, how those who basically transport vegetables are being impacted on the streets. Right now, I'm joined by one of the auto driver over here. Achha, mujhe bataiye, aapka jo ye hai, auto hai, wo saman, samagri le jane wala auto hai, hai na? Kya naam hai aapka? Aur iske bare mein thoda bataiye, kitna impact pada hai aapko? Abhi 1 rupya phir bad gaya hai.
4: Haan ji, farak to pad gaya bahut zyada. Utra kaam nahi hai, mila farak pada hai. फ़र्क पड़ गया है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है
0: अभी 2 दिन पहले देखा था 2 रुपये बढ़ा था फिर आज जो है 1 रुपये बढ़ गया 3 रुपये ओवरऑल बढ़ गया
4: हाँ जी तो बढ़ गया इसमें दिक्कत हो रही है सर बहुत ज़्यादा हम लोग का कई ट्रांसपोर्टर लोडिंग का काम करते हैं हम लोग टेम्पो तो अपने बाल बच्चे पालते हैं मिला इसमें बढ़ने से हम लोग को नुकसान है कंपनी का तो माल जरूर ढोते हैं मिला कंपनी उतना
0: कंपनी वाले से बोलिए कि रेट जो है वो बढ़ा
4: कंपनी वाला तो नहीं देगा तो फिर रिपोर्टर वाला काम करेंगे फिर पोर्टर भी उतना बचा नहीं आ रहा है 10% तो पोर्टर वाले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा उसमें
0: तो पहले जितना बचता था उससे अब कम बचत हो रही है क्या
4: कुछ भी नहीं बचत हो रही है अभी मान लो कि चलो मैं यहाँ पे 500 रुपये चक्कर ले जा रहे हैं हमें जाना अच्छे धाम 500 रुपये में गैस ढल गया टोल कट गया उसमें कोई रोक लिया हाथ दे दिया तो 150 रुपये वो भी ले लेते हैं उसमें हमारा कुछ नहीं बचता है
0: घर कैसे चल रहा है बाल बच्चे कैसे पाल रहे हैं
4: टाइम काट रहे हैं सर किसी तरह
0: टाइम काट
4: हाँ जी
0: कोई आह्वान सरकार से, कोई आह्वान, कोई
4: कुछ नहीं, कुछ नहीं।
0: कैसे जिए?

0: increased by a margin of 3 rupees, 3 rupees a few days back. And now what we have seen that again, if you see earlier, the CNG prices were hiked approximately 2 rupees. And today itself, if you see, 1 rupees have been added extra. Right now, I'm joined by one of the auto rickshaw drivers over here. अच्छा मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सौमेंद्रनाथ मंडल है।
0: अच्छा सौमेंद्रनाथ जी ये बताइए कि CNG का जो दाम है पहले दो रोज़ पहले 2 रुपये बढ़ा, आज फिर 1 रुपये बढ़ गया, मतलब इन टोटल 2 दिन के अंदर 3 रुपये बढ़ गया, कितना पॉकेट पे आप लोगों के असर पड़ेगा?
1: 3 रुपये बढ़ा तो असर तो पड़ रहा है, असर तो भारी पड़ रहा है। सब 500 रुपये किराया का गाड़ी है, घर का रेंट है, बच्चे को स्कूल पढ़ाना है, बहुत वो पड़ रहा है, असर पड़ रहा है इसमें। तो
0: इसकी वजह से आप लोगों जो है वो अपना जो भाड़ा है रेंट जो है वो, जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पहले 80 रुपये लेते थे, क्या उसको बढ़ाया आपने 100 रुपये?
1: अभी तक तो कुछ नहीं बढ़ाया, अभी देना ही नहीं चाहता। कस्टमर बोल रहा है कि क्यों ऐसा क्यों बढ़ा रहे हो भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम बोलते हैं देखो जी हमारा CNG का रेट बढ़ रहा है तो आपको भी तो बढ़ाना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट से थोड़ी बढ़ा है, गवर्नमेंट बढ़ाएगा तब ना बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ने CNG का दाम बढ़ा दिया है परंतु हमारा तो रेट नहीं बढ़ा है, हम कहाँ से देंगे इतना, वो भी हमारा भी तो जिम्मे असर पड़ रहा है। इसीलिए
0: घर कैसे चल रहा है, मुश्किल तो हो रही होगी थोड़ी बहुत?
1: पहले जैसा कमाई हो रहा था ऐसा अभी नहीं कमाई हो रहा है, पहले जैसा नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है सर।
2: CNG की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है, शुक्रवार को 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया CNG के दामों में और अब रविवार को 1 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है, यानी बीते 2 दिनों में 3 रुपये प्रति किलो CNG महंगा हो चुका है। और दिल्ली में इस वक्त CNG की जो कीमत है, रेट है, वो है 80 रुपये 9 पैसे प्रति किलो। हम एक पेट्रोल पंप पर है, CNG पंप पर है और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, कुछ ऑटो वाले हैं हमारे साथ। स्वाभाविक सी बात है जब कीमतें बढ़ती हैं तेल की तो महंगाई बढ़ती है और बजट सबका बिगड़ता है। आप लोगों की परेशानी कैसे बढ़ती है जब ये CNG की कीमत बढ़ती है? तो
3: बढ़ती क्या है, मतलब हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, ये नहीं है वो CNG भी बढ़ रहा है, सामान का भी रेट बढ़ रहा है।
2: किराया बढ़ रहा है कि नहीं?
3: हाँ
2: आपका
3: किराया तो और कमते जा रहा है, किराया तो बढ़ नहीं रहा है।
4: CNG का ये है ना, CNG का रेट तो बढ़ तो गया लेकिन किराया तो बढ़ नहीं रहा, बस किराया यही है जो भाई हम कहते हैं इतना ही पैसा दूंगा।
5: देखिए CNG तो आम आदमी CNG गाड़ी चलता है भाई, CNG गाड़ी आदमी इसलिए लेता है क्योंकि उसको पता है कि मैं इतनी कॉस्ट पे नहीं कर पाऊंगा जो पेट्रोल की ज्यादा है, डीजल की ज्यादा है। लेकिन अब तो CNG के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं तो आम आदमी की जेब पर लगातार भार पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की गलत विदेश नीतियों की वजह से सरकार की आज ही आम आदमी के ऊपर ही बोझ पड़ रहा है। आज दिल्ली और देश भर के लोगों के ऊपर जो पेट्रोल डीजल CNG की मार पड़ रही है और उससे जो चाहे वो दूध महंगा हो रहा है चाहे वो आटा महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार के पास कोई उसको साधने का उसके कोई जरिया नहीं है।
6: इट इज वेरी शेमफुल, जस्ट एवरी टाइम द इलेक्शन गेट ओवर द भारतीय जनता पार्टी स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइसेस एंड CNG इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, द एंटायर सिटी इन दिल्ली मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन CNG, द मोमेंट दिस गोज अप द एंटायर प्राइस राइज हैपेंस इन दिल्ली एंड दिस इज द सेम प्राइम मिनिस्टर, द सेम गवर्नमेंट विच यूज टू रिडिक्यूल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट। सो भारतीय जनता पार्टी इज जस्ट मेकिंग मनी फॉर द कॉर्पोरेट्स। Every time the Prime Minister elections are happening, he talks about how he's working well. But the moment elections get over, the only thing he does is increase the price of LPG, gas, cylinder, and then petrol, and now diesel, and now CNG.
7: Because that's the opposition hitting out at Prime Minister Modi. What does Prime Minister Modi have to say on all of this? Well, he has come out with one of his strongest warnings, yes. He's gone ahead and described the current phase as a disaster decade, citing the impact of COVID-19, the ongoing wars, and the global

0: आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: Let's switch tracks now to the widespread protests that have erupted across the country over the NEET UG paper leak scandal. It is the government, through the education minister, who has assured a fair and thorough CBI probe while taking responsibility for the breach. Protests have erupted across the country as Delhi's police has gone ahead and they have detained Aam Aadmi Party workers. Why? Because they were demonstrating over the NEET scandal. NSUI activists are staging protests not just outside the NTA office in Delhi, but they also had demonstrations in Latur in Maharashtra, demanding strict action against those involved. And the opposition led by Rahul Gandhi has demanded the immediate resignation of the education minister, Dharmendra Pradhan.
2: आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, RSS, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
3: नीट पेपर 2024-25-26 तीन बार लगातार जिस प्रकार पेपर लीक हुए हैं उसे इतना आक्रोश है जिसकी कल्पना एनडी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसे लोगों के चयन किए हैं, सब जगह बैठा दिया, जो नाकेबिल लोग हैं, नाकाबिल लोग हैं, प्रसारण की क्षमता उनमें नहीं लगती है। इसी कारण से एक बार लीक हो गया समझ में आता है, दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार हो गया, इसको क्या कहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो खुद को इस्तीफा देना चाहिए, उनका तो ज़्यादा मन राजनीति में लगता है, उनका मन सरकारें तोड़ने में बनाने में लगता है। ये उनकी भूमिका पहले भी रही, राजस्थान के लिए भी रही है, मैं मालूम है।
4: दी नीट लीकेज विच हैज दी सीबीआई हैज एंटर्ड द सीन, दे हैव टेकन अप द इन्वेस्टिगेशन, दे हैव अरेस्टेड द किंग पिंस, they have arrested many accused persons and all. Definitely it is a matter of concern for the future of the students and the students who are appearing for the NEET examination. But the government was also very alert and very proactive after the leakage was announced and the culprits were brought to the book. Congress party is unnecessarily trying to mislead the students, because the students have really, they have suffered a lot because of this paper leakage, and he also appealed to the people to give suggestion for improvement of NTA. So the Congress party should not politicize this particular issue.
5: देखिए, ये एक चुनौती है निश्चित रूप से। जो एजुकेशन मंत्री हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे और बच्चों का भविष्य पूरा सिक्योर रहेगा।
6: This is not the first time the NEET question paper is leaking. So far, so many question paper leaked. This government is expert in leakage of question paper. They are playing with the future of the students of this country. How many times we raise this issue? We need a foolproof system, but they are not working on it. That is why this situation arises. Everything is happened because of the incapability of the education minister. Where he should step down immediately. He should take the moral responsibility and he should step down immediately.
7: We are totally opposed to these NEET exams from the beginning. This should be permanently abolished. This year what has happened? Due to the leak of the question papers, the exams could not be conducted, and 22 lakh students who prepared themselves for months, they were disappointed. So who is responsible for this? Who is responsible? Therefore, the union minister, the particular portfolio education minister, Mr. Dharmendra Pradhan, should submit his resignation. He should

0: not continue as the education minister.
1: बहुत ही गंभीर अफसोसजनक बात है कि नीट का इस तरह से जो पेपर है वो लीक हो रहा है. इसकी पूरी पूरी जवाबदारी सरकार की बनती है. सरकार ने 23 लाख स्टूडेंटों के करियर के साथ खिलवाड़ किया. एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक होगा एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दो. अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट एमबीबीएस बनकर डॉक्टर बन जाएंगे. तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप.
2: Switching tracks now to Andhra Pradesh, is the chief minister there announcing cash incentives for families having more children, saying that the state must act to reverse its declining population trend. Addressing a public meeting in Srikakulam district, it was Chandrababu Naidu there saying that the state government will provide 30,000 if you have a third child, 40,000 if you go ahead and have a fourth child. He added that detailed guidelines for the scheme would be announced, and that's going to take time, but that'll happen within the month. The Congress, meanwhile, has hit out at the Andhra Pradesh government's move and has criticized the decision. The Andhra Pradesh's government's population move is being seen a way to encourage higher birth rates amid a sharply falling total fertility rate and declining rural family sizes at that.
3: देश के अंदर पिछले 12 साल से किसी भी तरह से एक फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, कोई प्रोजेक्शन हो. अभी तो पिछले 7 साल से 6 साल से हम वेट कर रहे हैं कि सेंसस कब होगा. अब सेंसस शुरू हुआ है तो वो भी एक सर्वे के रूप में नजर आ रहा है. दूसरा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोकसभा की सीटों को बढ़ाने की बात हुई और प्रोपोर्शनेट में जो करने की बात हुई, तो साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं इस चीज का मैसेज गया कि अगर उनकी पॉपुलेशन कम रहेगी भविष्य में तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी. ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. आप नेशनल लेवल पर कोई भी फैमिली कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, इसके लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? मोदी सरकार पूरी तरह से फेल है.
4: Mr. Naidu's recent declaration of 30,000 rupees for a third child and 40,000 for a fourth is little more than at another desperate political stunt aimed at distracting the public from the massive failure of TDP-led coalition government in Andhra Pradesh. A chief minister who has utterly failed to deliver even one major Super 6 commitment is now brazenly announcing new promises that lack both credibility and any financial foundation for that matter. And the people of Andhra Pradesh are already living through the severe breakdown of welfare governance under Mr. Naidu's administration.
5: He is concerned about the demographic dividend and the demographic advantage which India is enjoying today. Probably we might lose it later. That is his concern. If you look at the TFR, the total fertility rate, the global TFR is 2.2%, 2.2, and India's TFR is 2.1. And to maintain the population at the same level, we need to have a TFR of 2.1 in India. And that is the reason why he is saying we should have third child.
6: बिल्कुल गलत है. ऐसा आया कि लोकसंख्या बढ़ेगी तो हमें ज्यादा कुछ मिलेगा, ये सोचना ही गलत बात है. अभी अपने बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, तो हर फैमिली, मैं बोलता हूँ मुसलमानों में भी बड़े पैमाने पे आजकल फैमिली प्लानिंग होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बच्चा, मेरे फैमिली में आपको बोलता हूँ, मेरे बाद के सारे जो लोग हैं वो मेरे रिश्तेदार में एक ही बच्चा है. बहुत सारी लड़की है लेकिन एक ही लड़की, लड़की है इसलिए लड़का होना चाहिए ऐसा भी नहीं है. तो कहाँ न कहाँ ये कॉन्शियसनेस बढ़ गया है कि अपना बच्चा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए. अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, तो फैमिली प्लानिंग ऑटोमेटिकली कर रहे हैं.
7: बीजेपी से पूछिए आप, उनके घटक दल हैं, 2AB एक्स्ट्रा था, बी तो खा गए ये लोग बिहार, ए बचा है आंध्रा. तो ये लोग तो बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, और इन्हीं के जो मुख्य घटक दल हैं वो तीसरे और चौथे बच्चे के लिए पैसे बढ़ा रहे हैं. तो बीजेपी बताए, इसका जवाब दे कि क्या ये कहना चाहते हैं.
2: Switching tracks to Keralam now, and it is going to be the oath-taking ceremony of the newly elected chief minister that's going to be taking place tomorrow. We're talking about Congress leader V.D. Satheeshan, all set to take oath as the new chief minister, even as hectic consultations continue over the composition when it comes to the new cabinet. Now, the Congress General Secretary, K.C. Venugopal, held meetings with Satheeshan and senior leaders, including Ramesh Chenithala, as the party works to shortlist around 20 ministerial names. While Congress leaders have denied reports of any internal rift, alliance partners have in fact stepped up their pressure. Is the Congress demanding two ministerial berths and the IUML seeking five positions in the new cabinet? On the other hand, it is the chief minister designate V.D. Satheeshan rejecting any kind of reports that are coming out of any feud with K.C. Venugopal after meeting him at his residence. He asserted that the organizational and cabinet related decisions were being taken. They're being taken jointly. That's what he said.
8: There are some forces in Kerala try to propagate hate campaign in Kerala. But Muslim League and their leader, Panagad, Sadiq Ali, Shihab Tangal, took a strong secular stand. He, with Mr. P.K. Kunyaluguri Sahib, they came to Cochin and they went to the Varapura Bishop House. They met the leaders. In Palluridi, there was an issue. They have taken a strong secular stand. UDF position is secular. They are also supporting that secular stand. We will continue it.
9: It is being decided by forces like the Jamaat-e-Islami and the SDPI is very disturbing. And I don't want to wade into any controversy, create any controversy 2 days before the swearing-in of the new chief minister. But it is an issue that will need to be discussed, will need to be scrutinized, not today, not tomorrow alone, but for the coming months and years. We will have to look at the conduct of this government and see how much of this government is being remote controlled by forces that are very dangerous for our state. And I have said long ago, mainstreaming SDPI, mainstreaming forces like Jamaat-e-Islami is not good for our state, not good for any Malayali.
2: As we track to Tamil Nadu, it's actor Rajnikanth who has made a striking political remark, saying that he would have won the 2021 elections. He's talking about the newly elected Chief Minister Vijay, the actor-turned-politician, that he would have won the last elections held in 2021 had he been contesting that time around as well. He clarified he holds no jealousy towards the Chief Minister and also has noted that expectations are, you know, immense when it comes to Vijay and that he remains significant amongst the people of Tamil Nadu. Rajnikanth further underlined that his personal friendship when it comes to the, previous Chief Minister, M.K. Stalin, it goes beyond political lines. His remarks come at a time of shifting political narratives in Tamil Nadu, where new alignments and rising figures are continuing to reshape the landscape.
10: 100% vetivettipu, adhu doubt illa. 100% vetivettipu, adhu doubt illa.
11: Appadiye solli adhukku oru vimarsanam. இன்னொன்று வந்து விஜய் மேலே எனக்கு பொறாமை. நான் அரசியல் வந்து இல்லை, அரசியல் நான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி அழைச்சி அரசியல் தான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் பொறாமை? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் எனக்கு பொறாமை வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. அப்போ கூட வந்திருக்காது, கிடைக்காது, கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது. ஸோ இன்னொன்று வந்து எனக்கும் விஜய்க்கு வந்து ஒரு எனக்கும் விஜயருக்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன், நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டா அது எனக்கு என்ன சொல்லுது கிட்ட பேர், விஜய் என்ன பேர் கம்பேர் பண்ணிட்டா அவருக்கு என்ன சொல்லுது? சின்ன வயசுல இருந்து அவருக்கு பார்த்துட்டு அவரு சீஎமானதுல எனக்கு என்ன போகிறான்? ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து தேர்தல் முடிவுகள் வந்த உடனே நான் வந்து ஸ்டாலின் சாரை போய் பார்த்தது, அது கொஞ்சம் விமர்சனங்கள் வந்து ஸ்டாலின் சார் அவர்களை என்னுடைய 38-40 ஆண்டு நண்பர், எங்களுடைய நட்பு கொள்கைகள் அரசியல் காப்பாற்பட்டது, ஜனநாயகத்தில் வந்து தோல்வி வெற்றி சடங்கள் இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில், நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன்.
2: Now, it's Tamil Nadu Chief Minister Vijay, who has completed just a week in office, but already every public appearance, every visual cue, and every political move.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
3: Well, some breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Tracking the latest updates coming in from the NEET paper leak probe, we're understanding that the opposition has now hit out at the center. Remember that the entire leak probe case has now snowballed into a huge political controversy. The Congress has hit out at the center, saying that the Modi government is an expert in paper leaks. The Congress has slammed the center, saying that the center is now playing with the students' future. Apart from the Congress, the AIMIM has also hit out at the center, saying that the paper leak was serious and regrettable. Now, apart from this, the AIMIM has said that the paper leak responsibility lies with the centre. So both parties pinning the blame onto the centre for the paper leak. Remember that the paper leak, like I said, has snowballed into a huge political controversy. We have some reactions coming in. Listen in.
4: ये गंभीर अफसोसजनक बात है कि नीट का इस तरह से जो पेपर है वो लीक हो रहा है। इसकी पूरी पूरी जवाबदारी सरकार की बनती है। सरकार ने 23 लाख स्टूडेंटों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ था 2 साल पहले। आज एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत करता है, इतना पैसा खर्चा करता है, कोशिश करता है, पूरा परिवार उसका साथ में उसके लगता है, वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में उसका पेपर बोलता है अच्छा गया, उसके बाद में आप आके बोल देते हो कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल। NTA आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया हमने, CBI की अब इंक्वायरी बिठा दो। अरे CBI की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफ़ी स्टूडेंट MBBS बनकर डॉक्टर बन जाएंगे। तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप।
5: दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द नीट क्वेश्चन पेपर इज लीकिंग। सो फार सो मेनी क्वेश्चन पेपर लीक। दिस गवर्नमेंट इज एक्सपर्ट इन लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री। हाउ मेनी टाइम्स वी रेज दिस इश्यू? We need a foolproof system, but they are not working on it. That is why this situation arises. Everything has happened because of the incapability of the education minister. Where he should.
3: Second hike as far as CNG prices are concerned in a matter of just 2 days in the Delhi NCR region, and the rate has crossed the 80 rupees per kg mark for the very first time in Delhi. And then we have politics that's mounting over the NEET paper leak, and the opposition upping its ante against the education minister demanding the resignation of Dharmendra Pradhan. Actor Rajnikanth wishing good luck to the Tamil Nadu chief minister, saying he would have won the last elections back in 2021 had he contested, saying that people of Tamil Nadu have a lot of expectations from the actor turned politician. And the stage is set. Satheesan is going to be taking oath, and that is going to take place tomorrow in Kerala. The new chief minister is set to take oath tomorrow while the Congress is yet to finalize its cabinet list. Politics over Madhya Pradesh court's Bhojshala is, as far as that temple verdict is concerned, with the Congress, they're slamming the BJP, saying the separatist party's only focus is basically to divide Hindus and Muslims. And then Trump comes out with a fresh warning of a very bad time ahead for Iran if it doesn't strike that deal. Iran, they're hitting back, saying we're ready to come back to fighting to resume direct military conflict.
6: Presented by Canara Bank. Together we can.
3: Let's start the afternoon with the news coming in as far as CNG prices are concerned. They're only going to get costlier in Delhi, once again marking the second hike in just 2 days. The sharp rise that you're seeing in prices has added pressure. It's added pressure on daily commuters, with consumers already feeling the pinch of increased fuel expenses as transport costs have gone up.
7: Many are fearing a direct impact on auto fares as well as budgets for the households here in Delhi. The prices have risen from 77 rupees, it's gone and crossed that 80 rupee per kg mark as well. In Gurugram, now you'll have to pay 85 rupees as opposed to 82 earlier. In Ghaziabad, we've seen a hike to 88 rupees and 70 paisa per kg. The opposition has launched a strong attack on the Modi government, calling it a failure of the centre's fuel pricing policy. They've alleged that repeated hikes are worsening inflation and burdening the common man.
8: After the fuel prices were hiked, we are seeing that the price of CNG has been hiked by 1 rupees once again. We're at a petrol pump station here in Delhi, in Pragati Maidan. We are showing you the visuals of the current pricing that has been mentioned here. CNG prices were increased by rupees 1 per kg. This marks the second price hike in just 48 hours following a 2 rupees per kg increase on May 15. Now, these revisions come amid broader fuel price spikes and rising global energy. Also, we are seeing in Noida, the price is right now around 88 rupees per kg. In Gurugram, it's 84 rupees point 0.12 paise per kgs. Now we are seeing people who are struggling because of the price hike and had in fact said that they were not prepared for this kind of a price hike. People who have come here early today, Sunday morning, and have in fact been speaking to us about the price hike. We'll speak to a few more people. Aapka naam kya hai sir?
9: Mera naam Tapeshwar Mahato.
8: Sir, hum dekh rahe hain CNG ke jo daam hai wo 1 rupaye aur zyada badh gaye hain. To kitni dikkat ho rahi hai?
9: Bahut zyada dikkat ho rahi hai. Yani bharne se to bahut zyada dikkat ho rahi hai. Ab zyada karke gaadi aise bhi online mein chal raha hai. Online mein kiraya utna hai nahi. 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलता है, उसमें भी 3 किलो 4 किलोमीटर कभी कभी 5-5 किलोमीटर फेंक देते हैं कि पिकअप करने के लिए.
8: तो क्या आपको पता था यहाँ आने से पहले कि 1 रुपए और बढ़ गए हैं?
9: हाँ पता था, हम लोग को सुबह ही पता लग गया था कि बढ़ गए.
8: तो मंथली बजट पर काफ़ी असर पड़ रहा होगा?
9: ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है.
8: We are seeing people who have been in fact putting their concerns forward. We'll try to speak to few more people here. आपका नाम क्या है सर?
10: अवनेश कुमार.
8: अच्छा सर, हम देख रहे हैं सीएनजी के जो दाम है वो 1 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं, तो उससे कितनी दिक्कत हो रही है?
10: नहीं, हमें तो कोई वो है नहीं है मैम, दिक्कत तो सबको ही रहती है मैम, क्योंकि इतनी महंगाई में उतनी तनख्वाह वाली है नहीं, जो जितने पैसे बढ़ा रहे हैं ये दिक्कत तो काफ़ी है मैम जी. Thank you.
8: We are seeing people who are voicing their concerns regarding this price hike. We saw earlier that the petrol prices were hiked, the diesel prices were hiked, but now we are seeing the CNG prices has once again been hiked by 1 rupees, and people have already said that this is going to take a hit on their monthly budget.
11: Amid the ongoing conflict in West Asia, what we have seen that the petrol and diesel prices have increased by a margin of 3 rupees few days back, and now what we have seen that again, if you see earlier the CNG prices were hiked approximately 2 rupees, and today itself if you see 1 rupees have been added extra. Right now I'm joined by one of the auto rickshaw drivers over here. Acha mujhe ye bataiye kya naam hai aapka?
12: Mera naam Soumendranath Mandal hai.
11: Acha ji, ye bataiye ki CNG ka jo daam hai, pehle do roz pehle 2 rupaye badha, aaj phir 1 rupaye badh gaya, matlab in total 2 din ke andar 3 rupaye badh gaya. Kitna पॉकेट पे आप लोगों के असर पड़ेगा?
12: 3 रुपये बढ़ा है तो असर तो पड़ रहा है, असर तो भारी पड़ रहा है. सब 500 रुपये किराया का गाड़ी है, घर का रेंट है, बच्चे को स्कूल पढ़ाना है, बहुत वो पड़ रहा है, असर पड़ रहा है उसमें. तो
11: इसकी वजह से आप लोगों जो है वो अपना जो भाड़ा है, रेंट जो है वो, जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले 80 रुपये लेते थे, क्या उसको बढ़ाया आपने 100 रुपये?
12: अभी तक तो कुछ नहीं बढ़ाया, अभी देना ही नहीं चाहता. कस्टमर बोल रहा है कि क्यों ऐसा क्यों बढ़ा रहे हो भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम बोलते हैं देखो जी, हमारा सीएनजी का रेट बढ़ रहा है तो आपको भी तो बढ़ाना चाहिए. कुछ गवर्नमेंट से थोड़ी बढ़ाया है, गवर्नमेंट बढ़ाएगा तब ना बढ़ाएंगे. गवर्नमेंट ने सीएनजी का दाम बढ़ा दिया है, परंतु हमारा तो रेट नहीं बढ़ा है, हम कहाँ से देंगे इतना? वो भी हमारा भी तो जिम्मे असर पड़ रहा है, इसीलिए.
11: घर कैसे चल रहा है? मुश्किल तो हो रही होगी थोड़ी बहुत.
12: पहले जैसा कमाई हो रहा था ऐसा अभी नहीं कमाई हो रहा है, पहले जैसा नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है ऐसा.
13: सीएनजी की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है. शुक्रवार को 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा किया गया सीएनजी के दामों में, और अब रविवार को 1 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है. यानी बीते 2 दिनों में 3 रुपये प्रति किलो सीएनजी महंगा हो चुका है, और दिल्ली में इस वक्त सीएनजी की जो कीमत है, रेट है, वो है 80 रुपये 9 पैसे प्रति किलो. हम एक पेट्रोल पंप पर है, सीएनजी पंप पर है, और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे. कुछ ऑटो वाले हैं हमारे साथ. स्वाभाविक सी बात है, जब कीमतें बढ़ती हैं तेल की तो महंगाई बढ़ती है और बजट सबका बिगड़ता है. आप लोगों की परेशानी कैसे बढ़ती है जब ये सीएनजी की कीमत बढ़ती है? तो
14: बढ़ती क्या है, मतलब हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है. ये नहीं है वो सीएनजी भी बढ़ रहा है, सामान का भी रेट बढ़ रहा है।
13: किराया बढ़ रहा है कि नहीं?
14: हाँ,
13: आपका किराया
14: किराया तो और कमते जा रहा है, किराया तो बढ़ नहीं रहा है।
15: सीएनजी का ये है ना, सीएनजी का रेट तो बढ़ तो गया लेकिन किराया तो बढ़ नहीं रहा। बस किराया यही है जो भाई हम कहते हैं इतना ही पैसा दूंगा।
16: देखिए सीएनजी तो आम आदमी सीएनजी गाड़ी चलता है भाई, सीएनजी गाड़ी आदमी इसलिए लेता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे मैं इतनी कॉस्ट पे नहीं कर पाऊंगा जो पेट्रोल की ज्यादा है, डीजल की ज्यादा है। लेकिन अब तो सीएनजी के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं तो आम आदमी की जेब पर लगातार भार पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की गलत विदेश नीतियों की वजह से सरकार की आज ही आम आदमी के ऊपर ही बोझ पड़ रहा है। आज दिल्ली और देश भर के लोगों के ऊपर जो पेट्रोल डीजल सीएनजी की मार पड़ रही है और उससे जो चाहे वो दूध महंगा हो रहा है चाहे वो आटा महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार के पास कोई उसका उसको साधने का उसके कोई जरिया नहीं है।
17: इट इज वेरी शेमफुल, जस्ट एवरी टाइम द इलेक्शन गेट ओवर द भारतीय जनता पार्टी स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइसेस and CNG is a public transport. The entire city in Delhi, most of the people are dependent on CNG. The moment this goes up, the entire price rise happens in Delhi. And this is the same Prime Minister, the same government which used to ridicule Dr. Manmohan Singh Ji's government. So Bharatiya Janata Party is just making money for the corporates. Every time the Prime Minister elections are happening, he talks about how he's working well. But the moment elections get over, the only thing he

0: मेरा नाम सिमू है और मैं 23 इयर्स की हूँ और मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली के थ्रू खेलती हूँ। इधर आ, इधर आ।
1: हेलो दी।
0: हेलो, कहाँ से है तू?
1: हेलो सबको,
0: हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे रिहाना।
0: हैप्पी बर्थडे।
2: हाथ मिला। थैंक यू।
0: चॉकलेट दे।
1: चॉकलेट दो।
2: चॉकलेट कहाँ है तुम्हारा?
1: हेलो सुनीता।
0: पूरा रियलिटी खोल देती है ये।
2: और क्या,
0: मैं हाथ से नहीं खाऊँ, हाथ से खाऊंगी। इस वीडियो में हमारा पोहा आएगा अभी। ये सोचेंगे ना न्यूट्रिशियन फूड है। चाहिए
1: मेरे को स्पून चाहिए।
0: मैं असम में पैदा हुई थी। मम्मी और भैया है, पापा तो छोड़ के चला गया।

0: ইয়াতে পৰি আছোঁ ল'ৰাটো লৈ পেলাই। সি নিজে নিজে সব কৰি পেলাই তাৰ নিজে এতিয়া নিজে ভৰিত থিয় হৈ আছে, থিয় হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু মই বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে, যে না তই মানুহ হ, মই যেনে আছোঁ তেনেকৈ থাকোঁ, তই মানুহ হ।
1: जब मैंने नेशनल खेला, खेलने के बाद मुझे सर ने बोला है कि तुम लोग को इंटरनेशनल टीम का भी सिलेक्शन होगा, तो अच्छे से खेलना। तो उसके बाद मैंने दो मैन ऑफ द मैच लाई थी, मतलब उस टाइम पर तो 2023 हो गया था वो। 2023 में दो इंटरनेशनल लाने के बाद हम लोग का मतलब टीम सिलेक्शन हुआ है, तो उस टीम में मेरा नाम आया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उससे पहले तो जितना भी मेहनत किया था, मैं खुद से ही मेहनत किया, मेरे दोस्त लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। उसके बाद जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था वो राजस्थान से मिला था मुझे, तो मैं वैसे अपना कंटिन्यू किया। अभी तक भी लोग जानते नहीं है ब्लाइंड क्रिकेट क्या हुआ है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद थोड़ा सा फेमस हुआ है कि हाँ, मतलब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है, लड़कियाँ भी खेलते हैं, ऐसा अभी तक मतलब लोगों को पता चला है इतना। उससे पहले किसी को पता नहीं होता था कि ब्लाइंड क्रिकेट भी है। हाँ, बॉयज़ के लिए है, लेकिन गर्ल्स के लिए तो नहीं है कुछ भी। लेकिन ये वर्ल्ड कप ने हर चीज़ पता कर दिया लोगों को क्या है नहीं।
0: मोर तो घर तेने टिवि नाय, सबे मैंने मोबाइल के देखूँ बा लोकर मोबाइल चाय पे मोक आ पे कह थके तो छाले कैसे तैनक कैसे भल लगे।
1: मेरा मम्मी को मैं बता नहीं पाई, एज मैं श्रीलंका में थी, उसमें नेटवर्क के इशू थे। तो मेरा मम्मी को मैंने रात को फ़ोन किया था, मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो क्या हुआ है कि पूरा न्यूज़ स्प्रेड हो गया था, तो असम में भी न्यूज़ आ गया था, तो लोग बोलने लगे तुम्हारा बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिया, तुमको पता नहीं है। तो मम्मी ने विश्वास नहीं किया। मम्मी को पता था कि मैं खेलने आई हूँ, लेकिन फाइनल कब है ये मम्मी को याद नहीं था। तो इसी 24 को सब लोगों ने मम्मी को ऐसा बताया। जब भी मम्मी काम करने जाते, तुम्हारा पार्टी दो, तुम्हारी लड़की ने ऐसा किया, मम्मी बोलते मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो 24 को शाम को मैंने मम्मी को बताया, मम्मी हमने जीत, मैंने पूरा हम इंडिया टीम जीत गया है, अपने वीडियो देखा बड़ा बड़ा। हाँ, इसीलिए मतलब मुझे लोग ऐसा बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटी ने इतना अच्छा काम किया, तुम पार्टी नहीं दे रहे हो, कब मिठाई खिलाओगे। मैं बोला हाँ, इसलिए बोला था। जर्नी में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन वही स्ट्रगल लेकर अगर हम चलेंगे, अगर हम बोलेंगे कि यार मेरे पास आज बहुत ठंडी होता है, लोग बोलते बहुत ठंडी है, क्या करना है। अगर हम स्ट्रगल सोच के हम रह जाएंगे ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम बोलते कि यार मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मैं लड़की हूँ, मुझे क्या करूँगे। लोग काफ़ी पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरे बेटी ब्लाइंड है, उनको मैं हॉस्टल नहीं भेजूँगी, क्या वो क्या कर लेगी जाके, उसको वैसे भी शादी करके भेजना है। लेकिन ये जो सोच है ना, ये सोच कभी एक पेरेंट्स को नहीं रखना चाहिए।
2: जल्दी दो,
1: बच्चों को दे दो। नहीं नहीं, मैं जब 5 साल की थी तब से मैंने खाना बनाना भी शुरू किया है। मैं सब कुछ बना लेती हूँ, नॉन वेज से लेकर वेज तक। हाँ, धो ले, आ जाओ। शिखा मैम, बेंगलोर। कितने बजे निकलना है?
3: रुको, मैं किशोर से एक बार बात करूँगी, रुको।
1: ठीक है। ये इंडियन ड्रेस है, प्लेइंग ड्रेस, ड्रीम होता है, हर किसी को नहीं मिलता ये पहनने के लिए, लेकिन मुझे मिला है पहनने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कोई लड़ता है इसको पहनने के लिए, और हर किसी का किस्मत नहीं होता है, लेकिन मेरे किस्मत ने मेरा साथ दिया मुझे लगता है। मेरा जर्सी नंबर 1 है। ठीक है सर, बाय बाय बाय सबको, बाय, थैंक यू। बस स्टैंड पे जा रहे हैं मैम, मोटर टाउन से आज़ादपुर के लिए लेंगे, आज़ादपुर से जाएंगे बस नंबर 7578, तो मोती नगर डायरेक्ट मॉडर्न स्कूल, यहाँ से लेफ्ट। इसे अगले स्टैंड उतरना है। ट्रैवलिंग करना पसंद है मेट्रो से।
2: करोगे ना।

है बस नंबर 70 रहने से बता देना, 75 और 78। हाँ मोती नगर। कभी कभी ऐसा होता है कि अनसुना कर देते हैं लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ तब मुझे फीलिंग्स आती है यार, काश मुझे दिखता तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। भैया मोती नगर उतार देना। असम में मेरा घर कठहतुली कछाड़ी गांव, 4 नंबर वार्ड। असम से दिल्ली आना मेरा एजुकेशन की पर्पज़ से आना हुआ है 2019 में। क्रिकेट खेलना 2022 में मैंने शुरू किया। मैं हॉस्टल में जब रहती थी मुंडिका जब रहती थी तो लड़कियां बातें करते थे कि तुमको हॉस्टल में तुम मतलब उन लोग बात करते थे कि मुझे अगले अगले स्टेट में जाना होता है, खेलना पड़ता है। तो मैंने भी बोला कि मैं भी जाऊँगी घूमने के लिए, तो मैं घूमने की पर्पज़ से गई थी। लेकिन उनमें ही मैम ने मेरा स्किल देखा, उसने मुझे बैटिंग करने के लिए बोला, मैंने बैटिंग किया तो उसने मेरा स्किल देखा तो उसने बोला है कि तुम कर सकते हो, तुम कर लो। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मुझे मन नहीं करता है। हाँ तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला है कि तुम कर सकते हो, तो मैंने उससे मेरा कंटिन्यू हुआ है। व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले लाइक नो वन वाज सपोर्टिंग मी, एवरीवन वाज टेलिंग बीइंग अ गर्ल बीइंग अ ब्लाइंड हाउ विल यू एबल टू प्ले, बट दैट आई शोन इनटू एक्शन।

मतलब बॉल की आवाज़ हम सुनते हैं, फोकस करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बॉल की आवाज़ पता नहीं चलता है, तो हम बैट से नहीं, हम टक्कर नहीं लगा सकते बॉल को बैट से। तो वही है, वी हैव टू दो ही चीज़ है, फोकस करना है और अपने मन में एक इशारा रखना है कि अच्छा लो अभी इसने बॉल छोड़ दिया, तो मतलब अभी आने वाला है। सो ये दो ही चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। ब्लाइंड क्रिकेट जो कहा जाता है ना, उसके कीपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हैं, तो वो कौन देखता है? कीपर। जब हम बॉलिंग करते हैं, हम पहले स्टंप छू कर देखते हैं क्या हम सीधा है कि नहीं, इतना डिस्टेंस रखना चाहिए। ये दिस इज़ द मेजरमेंट। हम जब बॉलिंग करते हैं तो कीपर को पूछते हैं कि हमारा हाथ सीधा है कि नहीं, इज़ इट आवर हैंड स्ट्रेट, सो चेक द कीपर। तो कीपर बोलेंगे राइट लेफ्ट, और कीपर पूरा स्ट्रेट कराएंगे उस हाथ को। तो स्ट्रेट करने के बाद तो हम मतलब तैयार है फेंकने के लिए, बोला हियर हियर हियर, मतलब इधर इधर इधर फेंको। तो डायरेक्शन देंगे हियर हियर हियर, उसके बाद हम रेडी बोल के प्ले बोल के फेंक देते हैं। प्ले, वाह वाह। व्हेन आई जॉइन फर्स्ट टाइम, मुझे थोड़ा प्रेशर लगा था कि यार मैं कैसे खेलूँगी, हाउ विल आई प्ले यार, इट्स सो टफ। व्हेन आई सो दैट गर्ल्स आर प्लेइंग, देन आई जस्ट फील माई सेल्फ दैट वाई आई कैन प्ले, आई ऑल्सो कैन प्ले, इफ दे आर एबल टू प्ले देन आई ऑल्सो।

0: president because of his personal friendship with him, and he had greeted Bijay. It is, the media had carried that news also. That's all. He has explained the position, that's all. But somehow some people are always doing some twisting work for which his answer will take care. No, these are all somebody who, what did Rajinikanth told that I am for DMK-ADMK merger? No. Somebody will talk something.
1: 15 நாள்லயே அப்படி தான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது அரசியலுக்கு. சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான். அதனால புதியவர்களை வந்து நம்ம கம்மியாகவும் எடை போட வேண்டாம், ரொம்பவும் எதிர்பார்க்க கூடாது. என்ன நடக்குமோங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நீங்க தானே ஓட்டு போட்டீங்க, நீங்க தான் அது நல்லபடியா நடக்குதாங்கிறது நீங்க தான் கவனிக்கணும், நாங்களும் கண்காணிக்கிறோம். சிரிப்போட தான் சொன்னாரே தவிர நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பொறாமப்பட்டது கிடையாது, போட்டி போடுவோம் பட் பொறாமப்பட்டது கிடையாது. We are the best sportsman you can find in Tamil Nadu. அது நாங்க சினிமா துறையில இருக்கோம், நாங்க கிரிக்கெட் விளையாடி இருந்தாலும் இப்படித்தான் இருந்திருக்கோம்.
2: And switching tracks from Tamil Nadu to Andhra Pradesh is the Chief Minister Chandrababu Naidu, who's announced cash incentives for families if they were to have more children, saying the state must act to reverse its declining population trend. And in fact, the Chief Minister went on to make an announcement that 30,000 will be offered to the family that's going to go in for a third child. If you have a fourth child, the government will give you 40,000 rupees. He added that detailed guidelines for the scheme would be announced and that will take about a month's time from now. But the Congress has hit out at the Andhra Pradesh government's move and has criticized that very decision, saying that this move is being seen in order to encourage higher birth rates amid a sharply falling total fertility rate.
3: So-called promise given by the Chandrababu Naidu is not a policy decision, but it is a clear-cut political distraction tactics only to divert the so-called broken-up promise or the anger of people of Andhra Pradesh or so-called failure of the TDP-led coalition government.
4: ऐसा आया कि लोक संख्या बढ़ेगी तो हमें ज्यादा कुछ मिलेगा, ये सोचना ही गलत बात है. अभी अपने बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, तो हर फैमिली, मैं बोलता हूँ मुसलमानों में भी बड़े पैमाने पे आजकल फैमिली प्लानिंग होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा बच्चा, मेरे फैमिली में आपको बोलता हूँ, मेरे बाद के सारे जो लोग हैं वो मेरे रिश्तेदार में एक ही बच्चा है, बहुत सारी लड़की है लेकिन एक ही लड़की लड़की है, इसलिए लड़का होना चाहिए ऐसा भी नहीं है. तो कहाँ ना कहाँ ये कॉन्शियसनेस बढ़ गया है कि अपना बच्चा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए. अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, तो फैमिली प्लानिंग ऑटोमेटिकली कर रहे हैं.
5: How can a sensible chief minister in India can make these kinds of announcements? In which world he lives? The thing is that he is infamous for these kinds of remarks. This promise was delivered by him long ago also. Then what is the logic in it? What is the stand of our prime minister and other ministers? So when we are seriously adopting family planning measures and there is an urgent need to control population based on many factors, and how this types of a statement can be made by a chief minister of our country? People should understand these are old dirty politics and what is to say without any basis.
6: देखिए आबादी को लेकर पहले भी ये चिंता रही है कि बहुत सी जगह आबादी बढ़ रही है, बहुत सी जगह घट रही है. तो जहाँ घट रही है वहाँ उसमें आंध्र प्रदेश भी है. तो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने तौर पे स्कीम बनाई है और सरसंचालक जी ने भी कहा था कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए. तो देश में सबको 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए.
2: Let's get you some breaking news coming in, and this is Rahul Gandhi attacking the education minister. In fact, taking a pot shot at the prime minister is Rahul Gandhi, saying that papers been leaked, exams not been cancelled. Ministers, demanding the resignation of the education minister is Rahul Gandhi time and again. But he's saying that time and again there have been paper leaks. Prime minister, what are you doing about this? The country is asking you some questions. Answer them. Why are paper leaks happening repeatedly? Why are you silent again and again when it comes to the exam paper discussion? Why aren't you dismissing the education minister who keeps failing repeatedly? Let's get you details of this. And in fact, let's get in. We have my colleague joining us, Janinder. Janinder, take us through the details of

0: Rahul Gandhi there demanding the resignation of Dharmendra Pradhan and now even reaching out to the Prime Minister for the same.
1: Yes, Rahul Gandhi is repeatedly raising this question, and he, in the latest social media post, he has posed three questions to Prime Minister. He is asking PM to break his silence on this neat leak issue, and also Rahul Gandhi has demanded not only resignation, but he has asked Prime Minister to sack Education Minister Dharmendra Pradhan. For more, we have Mr. Nasir Hussain, Congress Party Member of Parliament, with us. Why Congress is adamant on resignation of Education Minister? NTA and CBI are on working to probe, and the inquiry is going on.
2: The 89 paper leaks in last 10 years, 48 times examination has been cancelled. NTA has been again and again responsible for this. This government doesn't care about what is happening to the future of the students. Poor people, poor parents, sending their kids to write exam. They have to travel to far-off places. They have to stay in the hotels. They have to spend money and write the exam. So you're re-conducting the exams. Your paper leaks are happening. So who is behind this? Who is behind this conspiracy? Few of them have been arrested. But don't you think that the minister is responsible? Don't you think that the government is responsible? Don't you think that the minister should resign? Don't you think that NTA officials should resign? And who are the people who are conducting this exam? Whom has NTA given authority to conduct this exam? Which are the centers where these exams are being conducted? If you look at all this, if you start investigating all this, the link will lead to all karyakartas of BJP, karyakartas of RSS, these institutes and the centers where these exams are being conducted all belong to, in one way or the other, to the BJP. The people those are involved and to whom this responsibility of conducting the exams have been given, all those agencies belong to BJP. So it is very clear the conspiracy has at the highest level to leak the paper and to help few students for the sake of money, for the sake of for other factors. Is very, very clear. Rahul Gandhiji is asking the right question.
0: Right. Well, that is, of course, the reaction that the Congress Party has in regard to that paper leak. Now, widespread protests have erupted across the country over the neat UG paper leak scandal. The government, though, this is through the Education Minister Dharmendra Pradhan, assuring a fair and thorough CBI probe while taking responsibility for the breach. Protests erupted not just here in Delhi, where Aam Aadmi Party workers demonstrating over that scandal. They, in fact, there was action taken by the police. They were detained. And then we also have the NSUI activists who staged a protest outside the NTA office first in Delhi, and that was followed by demonstrations in Maharashtra, in Latur as well, demanding strict action against those involved. And of course, Rahul Gandhi there demanding that the education minister step down.
3: Aapne Hindustan ka jo core hai, jo center hai, usko damage kiya hai. Ye ek nexus hai, RSS, BJP, और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है. प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए.
4: The neat leakage, which has it, the CBI has entered into scene, they have taken up the investigation, they have arrested the kingpins, they have arrested many accused persons and all. Definitely, it is a matter of concern for the future of the students and the students who are appearing for the neat examination. But the government was also very alert and very proactive after the leakage was announced and the culprits were brought to the book. Congress party is unnecessarily trying to mislead the students, because the students have really, they have suffered a lot because of this paper leakage, and he also appealed to the people to give suggestion for improvement of NTA. So the Congress party should not politicize this particular issue.
5: This is not the first time the NEET question paper is leaking. So far, so many question paper leaked. This government is expert in leakage of question paper. they are playing with the future of the students of this country. How many times we raise this issue? We need a foolproof system, but they are not working on it. That is why this situation arises. Everything has happened because of the incapability of the education minister. Where he should step down immediately. He should take the moral responsibility and he should step down immediately.
6: We are totally opposed to these NEET exams. From the beginning, this should be permanently abolished. This year, what has happened? Due to the leak of the question papers, the exams could not be conducted, and 22 lakh students who prepared themselves for months, they were disappointed. So who is responsible for this? Who is responsible? Therefore, the union minister, the particular portfolio education minister, Mr. Dharmendra Pradhan, should submit his resignation. He should not continue as the education minister.
7: बहुत ही गंभीर अफसोसजनक बात है कि नीट का इस तरह से जो पेपर है वो लीक हो रहा है. इसकी पूरी पूरी जवाबदारी सरकार की बनती है. सरकार ने 23 लाख स्टूडेंटों के करियर के साथ खिलवाड़ किया. एनटीए आता है, एक खाली सर्कुलर निकाल देता है कि क्योंकि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल कर दिया हमने, सीबीआई की अब इंक्वायरी बिठा दे. अरे सीबीआई की इंक्वायरी बैठेगी, जब तक उसका रिपोर्ट आएगा तब तक तो काफी स्टूडेंट एमबीबीएस बनकर डॉक्टर बन जाएंगे. तो किस तरह से आपको खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है, और अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स क्यों नहीं करते? जब इनके मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया ने सवाल किया, सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे, चले गए चुपचाप.
0: And now the pricing of CNG has become costlier in Delhi. This is the second hike in just 2 days, and the sharp rise in prices has added pressure when it comes to daily commuters and consumers already feeling the pinch of increased fuel expenses. Now, the transport costs are going up. Many fear a direct impact when it comes to auto fares and household budgets. In Delhi, prices have gone up to 80. This is for the very first time from 77 earlier. Gurugram up to 85 from 82 earlier. Ghaziabad and Noida are also now at 88.70 rupees and 70 paise per kg from 85 earlier. The opposition has launched a strong attack on the Modi government, calling it a failure of the centre's fuel pricing policy. They allege that the repeated hikes are worsening inflation and burdening the poor man.
8: Amid the ongoing conflict in West Asia, what we have seen that the petrol and diesel prices have increased by a margin of 3 rupees a few days back. And now what we have seen that again, if you see earlier, the CNG prices were hiked approximately 2 rupees. And today itself, if you see, 1 rupees have been added extra. Right now, I'm joined by one of the auto rickshaw drivers over here. अच्छा मुझे ये बताइए क्या नाम है आपका?
9: मेरा नाम सौमेंद्रनाथ मंडल है.
8: अच्छा सुमेंद्रनाथ जी, ये बताइए कि सी एन जी का जो दाम है, पहले दो रोज़ पहले 2 रुपये बढ़ा, आज फिर 1 रुपये बढ़ गया, मतलब इन टोटल 2 दिन के अंदर 3 रुपये बढ़ गया. कितना पॉकेट पे आप लोगों के असर पड़ेगा?
9: 3 रुपये बढ़ा है तो असर तो पड़ रहा है, असर तो भारी पड़ रहा है. सब 500 रुपये किराया का गाड़ी है, घर का रेंट है, बच्चे को स्कूल पढ़ाना है, बहुत वो पड़ रहा है, असर पड़ रहा है उसमें. तो
8: इसकी वजह से आप लोगों जो है वो अपना जो भाड़ा है, रेंट जो है वो, जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पहले 80 रुपये लेते थे, क्या उसको बढ़ाया आपने 100 रुपये?
9: अभी तक तो कुछ नहीं बढ़ाया. अभी देना ही नहीं चाहता कस्टमर, बोल रहा है कि क्यों ऐसा क्यों बढ़ा रहे हो भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो. हम बोलते हैं देखो जी, हमारा सी एन जी का रेट बढ़ रहा है तो आपको भी तो बढ़ाना चाहिए. कुछ गवर्नमेंट से थोड़ी बढ़ा है, गवर्नमेंट बढ़ाएगा तब ना बढ़ाएंगे. गवर्नमेंट ने सी एन जी का दाम बढ़ा दिया है, परंतु हमारा तो रेट नहीं बढ़ा है, हम कहाँ से देंगे इतना? वो भी हमारा भी तो जिम्मेदार असर पड़ रहा है. इसीलिए
8: घर कैसे चल रहा है? मुश्किल तो हो रही होगी थोड़ी बहुत.
9: पहले जैसा कमाई हो रहा था ऐसा अभी नहीं कमाई हो रहा है, पहले जैसा नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है ऐसा.
10: देखिए सीएनजी तो आम आदमी सीएनजी गाड़ी चलता है भाई. सीएनजी गाड़ी आदमी इसलिए लेता है क्योंकि उसको पता है कि मैं इतनी कॉस्ट पे नहीं कर पाऊंगा जो पेट्रोल की ज्यादा है, डीजल की ज्यादा है. लेकिन अब तो सीएनजी के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं तो आम आदमी की जेब पर लगातार भार पड़ रहा है. और भारतीय जनता पार्टी की गलत विदेश नीतियों की वजह से सरकार की आज ही आम आदमी के ऊपर ही बोझ पड़ रहा है. आज दिल्ली और देश भर के लोगों के ऊपर जो पेट्रोल डीजल सीएनजी की मार पड़ रही है, और उससे जो चाहे वो दूध महंगा हो रहा है, चाहे वो आटा महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है. लेकिन सरकार के पास कोई उसको साधने का उसके कोई जरिया नहीं है.
11: इट इज वेरी शेमफुल. जस्ट एवरी टाइम द इलेक्शन गेट ओवर द भारतीय जनता पार्टी स्टार्ट इंक्रीजिंग द prices. And CNG is a public transport. The entire city in Delhi, most of the people are dependent on CNG. The moment this goes up, the entire price rise happens in Delhi. And this is the same Prime Minister, the same government which used to ridicule Dr. Manmohan Singh Ji's government. So Bharatiya Janata Party is just making money for the corporates. Every time the Prime Minister elections are happening, he talks about how he's working well. But the moment the elections get over, the only thing he does is increase the price of LPG, gas, cylinder, and then petrol, and now diesel, and now CNG.
0: Right, let's listen into what the Prime Minister really has to say on this matter while the opposition continues to attack Prime Minister Modi's government.
12: ये दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है. पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है. ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है. हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा. दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी.
0: Switching tracks now, let's get you, this is the story that's coming out of Noida. A 33-year-old woman, Twisha Sharma, just died 5 months after her marriage in Bhopal, raising serious allegations of harassment from her family. She married Samarth Singh, a Bhopal-based lawyer, in December of last year. Her husband has been booked but is believed to be on the run, while her mother-in-law, a retired judge, is out on bail. According to Twisha's family, she was facing mental harassment and also domestic violence at her marital home. And they also alleged that she was pressurized to terminate her pregnancy and transfer financial assets given to her by her father. On the 12th of May, she last spoke to her mother, describing distress before the call abruptly ended. And soon after, the family was informed that she was not breathing and was declared dead on arrival at a hospital. The post-mortem report mentions hanging and multiple injuries, with forensic tests underway in order to determine the exact circumstances of her death.
13: Singh criminal lawyer hai, to is wajah se usko sare bachav ka sab tarika pata hoga, sari kis tarah se bacha jata hai. To usne crime kiya hai. Shuru mein to koi nahi karega itni jaldi. Shuru mein nahi, ek do mahine baad wo torture karne lag gaya tha. Shaadi ko 5 mahine hue hai. 5 महीने हुए मेरी बेटी को अभी. वो उसकी जो कपड़े भी उसने नहीं खोले, उसे जब तक तैयार कुछ एंजॉय नहीं कर पाई, कहीं गई नहीं वो 5 महीने में ही उसने पागल हो गई. 30 साल से मेरे साथ में, जब पागल ही थी वो. पढ़ी लिखी नहीं है तू, जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए है. वो लंदन जाने वाली थी. अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी में काम करेगी, बाहर जाएगी, उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी. तू गंवार है, तू तेरे को बोलना नहीं आता. हम तो दोनों को सजा चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं.
14: बिल्कुल संतुष्ट नहीं है. हमें यहाँ अन्याय की उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ की परवाह नहीं की जा रही. हम अगर आपको आपने इसको एंटिसिपेटरी बेल को आपने ट्रायल कोर्ट बना दिया, जैसे कि ट्रायल शुरू हो गई है. आपने उसका ट्रायल जैसे कंडक्ट करके आपने जो है इसमें उसको बेल ग्रांट दी. हम चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ज़रूर जाएंगे. हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की निष्पक्ष जांच हो. उसके लिए, जांच के लिए उसकी बॉडी, हमारा अधिकार है कि उसको एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया जाए.
15: रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है. ट्विशा का शव अभी भी एम्स के मॉर्चुरी में अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वो ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. फिलहाल इस पूरे मामले में सास गिरिजा बालक को जमानत मिल चुकी है और ट्विशा के पति समर्थ के मामले पर सुनवाई सोमवार को होगी. परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन भोपाल में उनकी आस टूटती नजर आ रही है और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. फिलहाल ट्विशा का परिवार और काफी सारे रिश्तेदार भोपाल में है. वो इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में जांच हो और जांच के बाद उन्हें न्याय मिले.
0: With that, we're stepping into a short break. Back with a whole lot more on the other side. Thank you for watching.

0: fighting this crime on the ground every day. On the show today, we look at the work of three of these NGOs whose relentless year-round work intensifies into a massive training and awareness campaign in the days leading up to Akshaya Tritiya, proving that constant vigilance is key to ending this crime. In Rajasthan's Ajmer district, the movement for change has been gathering momentum. Organized by Rajasthan Mahila Kalyan Mandal, these sessions do more than mobilize all the stakeholders on a unified platform. They speak directly to those whose future is most at stake, the children themselves. Apart from high-level strategy, school rallies like these ones educate children on their fundamental rights and provide them the tools to protect their own autonomy, turning potential victims into active defenders of their destiny.
1: तो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और राजस्थान महिला कल्याण मंडल के द्वारा जो ये कैंपेन एक सघन रूप से गांव में चलाया गया उससे निश्चित तौर पे हम ये मान सकते हैं कि एक चौथाई की बाल विवाह की घटनाएं हो रही हैं या उनमें बहुत भारी स्तर पर कमी आई
0: है। The strength of the Child Marriage Free India campaign lies in the women, children, the faith leaders, teachers, law enforcement agencies, community health workers, Panchayat Sachivs, CMPOs who lead the charge. Every stakeholder plays a vital role and their collective efforts ensure a strong line of defense against child marriage.
2: Akshaya Tritiya ke samay hum log high alert mode pe rehte hain. Hum pehle to ye karte hain jaise hamara roster jari hota hai to hum log har sambandhit thane mein ek roster dal dete hain pure zile ke andar ki wo log bhi high alert mode pe aa jaye kabhi bhi koi bhi aisi suchna mile to bilkul active ho jaye aur CWC ko suchit kare turant jaise hi hamare paas suchna aati hai aur hum turant action mode pe aa jate hain hum log pichle 8 varsh mein humne bal vivah ko rokne ke liye bahut athak prayas kiye hain hum logon ne sari jagrukta phailayi hai humne jab ADR mein jab hamare paas meetings hoti thi to hum wahan jate the kabhi sarpanch se humne baat kari hai kabhi schoolon mein baat kari hai jo parivar hamare samaksh aate honge counseling kariye koshish puri ye rahi ki बाल विवाह से बच्चों का बचपन बिगड़े ना बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे।
3: भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान बाल विवाह मुक्त भारत के समर्थन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला प्रशासन जिला पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस एवं महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर NGO के साथ मिलकर के एक साझा प्रयास किया जा रहा है जिसमें हमारे द्वारा पिछले एक वर्ष में लगातार लोगों को विधिक जागरूकता कैंपों शिविरों के माध्यम से बाल विवाह के बारे में उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में उससे नुकसानों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है समझाया जा रहा है
0: At the heart of this fight against child marriage stand local NGOs like Rajasthan Mahila Kalyan Mandal, a partner of Just Rights for Children, coordinating with different agencies and teams across different fronts.
1: दो मुख्य रूप से इसमें हम लोगों ने काम किया है पहला जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं जिसमें सरपंच हैं गवर्नमेंट टीचर हैं आंगनवाड़ी वर्कर हैं मेडिकल वर्कर हैं क्योंकि इनकी भूमिका एक बाल विवाह में बहुत रहती है तो इनके स्तर पर एक काम किया गया है और उसमें एक उल्लेखनीय जो डिसीजन राजस्थान हाईकोर्ट का आया कि बाल विवाह अगर गाँव स्तर पर होता है तो उसमें वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी इसका बहुत अच्छा प्रभाव ग्राउंड लेवल पर हमको देखने को मिल रहा है और बाल विवाह के स्तर में गिरावट आ रही है दूसरा जो राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने काम किया वो परिवार के स्तर पर किया जिन भी परिवारों में ये संभावना या हमको वो डाउट होता है कहीं से सूचना मिल जाती है कि बाल विवाह होने वाला है वहाँ हमारी टीम जाकर उनसे एक अंडरटेकिंग लेती है कि अगर आपने बाल विवाह किया तो इसके आपके दुष्परिणाम आपको भोगने होंगे दूसरा करीब 10.5 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने कम्युनिटी अवेयरनेस के माध्यम से हर व्यक्ति से प्रतिज्ञा पत्र भरवाया है कि मैं अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं करूंगा और कोई भी बाल विवाह कहीं करता है तो उसमें मैं सपोर्ट नहीं करूंगा इससे भी एक जन जागरूकता का एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ है और बाल विवाह के स्तर में कमियाँ
2: देखिए स्थायी NGO जो स्थानीय NGO होते हैं वो CWC के लिए एक आँख और कान का मान लीजिए हम सिम्बोलिक करते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पर वही लोग होते हैं उन्हें जैसे सूचना मिलती है वो हमारे पास लेकर आते हैं और रेस्क्यू करवाने में हेल्प करवाते हैं तो NGO ही पहली वो कड़ी होती है जो हमारे समक्ष बच्चे की फरियाद लेकर आती है जो बताता है कि बच्चा वहाँ पर मुश्किल में है या यहाँ इस बच्चे के साथ ये चीज़ हो रही है, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, चाहे बाल भिक्षावृत्ति हो, चाहे कुछ भी और हो, तो एनजीओ का सहयोग हमारे लिए बहुत सही रहता है और हम लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। हम बाल कल्याण अधिकारी जो संबंधित बाल थाने में होते हैं उनकी भी हेल्प लेते हैं और एनजीओ की भी हेल्प लेते हैं।
3: देखिए एनजीओ का हमारे उसमें तालमेल बहुत, हमें सहयोग उनसे मिलता है क्योंकि हमारी माननीय रालसा की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इन सब की टीम जो पैरालीगल वॉलंटियर पीएलवीज के रूप में काम कर रही है, जो ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रही है, उसको जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें तुरंत प्रभाव से हमें बताती है, ऑफिस में सूचना देती है और हम प्रशासन के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त एनजीओ जो हैं वो भी ग्रास रूट लेवल पर वर्क कर रहे हैं, तो एनजीओ को भी यदि सूचना मिलती है तो वो भी हमें सूचित करते हैं और पब्लिक को अवेयर करने का काम और बाल विवाह को रोकने की सूचना देने की इन सारे कामों में एनजीओ का सहयोग हमारे को बराबर मिलता रहता है, अपेक्षित है, और उनके सहयोग से भी हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर रोकथाम लगा पाते हैं।
0: Another key piece of information that the Rajasthan Mahila Kalyan Mandal has worked to decimate in Ajmer district is about the National Toll-Free Helpline 1098. For many in these communities, this number is the most direct link to child protection services. By integrating 1098 into their local awareness sessions, the NGO ensures that residents are not just aware of the law, but are equipped to use it. The counselors are responsive and trained to provide a bridge between informants and legal authorities.
4: ये सर आउटरीच के माध्यम से भी पहुंचती है और जो बुक्स है अपने राजस्थान के अंदर उन सभी जगह उन बुकों के पीछे 1098 का चित्र है, उसके माध्यम से भी पता चलता है। और हमारी टीम जो चाइल्ड हेल्पलाइन अजमेर की टीम है, तो हम आउटरीच के माध्यम से स्कूल, स्टेट एरिया और मार्केट के अंदर 1098 का प्रचार प्रसार करते हैं। उसमें पैम्पलेट देना और 1098 से बच्चा किस प्रकार अपनी हेल्प ले सकता है उसका हम आउटरीच करते हैं।
0: दीज आउटरीच प्रोग्राम्स बाय राजस्थान महिला कल्याण मंडल आर नॉट स्टैंड अलोन इवेंट्स, रादर अ ईयर राउंड कंसिस्टेंट अवेयरनेस एंड नॉलेज जनरेशन विद द कम्युनिटी। These programs include organizing awareness and pledge activities in schools, keeping a track of school dropouts to ensure that they are not forced into child marriage, and linking families to government schemes. These efforts bring together stakeholders on all four levels: village, gram panchayat, block, and district, building a holistic ecosystem which propels the movement forward. The sustained momentum does move the needle, yet the journey is fraught with its own share of challenges.
3: हमारे द्वारा विधिक जागरूकता कैंप लगाए जाने के बावजूद भी लोगों में जागरूकता फैली है, अपराध में कमी आई है, फिर भी कुछ लोग बड़ा एडमेंट हैं, वो भी फिर भी इस अपराध को करने की कोशिश करते हैं। कुछ अज्ञानता, इलिटरेसी भी है और कुछ लोगों के कस्टम्स के नाम पे और वो बाल विवाह करने में रहते हैं। इससे हम वो चोरी छुपे जब करते हैं या सामूहिक विवाह करते हैं या हमको पता नहीं चलता है या हम जाकर हमारा पीएलवी या कोई सूचना हमें दी जाती है तो उसको प्रोटेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी चुनौती के रूप में हैं।
0: फ्रॉम राजस्थान वी ट्रैवल साउथ ईस्ट इन टू द हार्ट ऑफ झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। गोड्डा इज होम टू न्यूमरस इंडिजिनस ट्राइब्स। Most of these communities rely on agriculture and forest produce for their livelihood. When poverty pushes families to the brink, children often pay the price, forced into early marriages as means of survival.
5: कुछ ऐसे सामाजिक कारण हैं जिसके कारण ये दर टू दर पीढ़ी दर बाल विवाह होते आ रहा है और बाल विवाह के प्रति ये अनुभव है कि लोग बेटियों को अपना बोझ समझ रहे हैं और इस कारण से शिक्षा पूरी करने के बजाय बच्चों की शादियां कर दिया करते हैं। खासकर हम गोड्डा की बात करें तो पिछले 10-12 साल से यहाँ पे हमने बाल विवाह के दर को कम करने के लिए काफ़ी कुछ किया है। उसमें सबसे पहला चीज़ है, हमने किशोरियों का सेशन किया है, उनके अभिभावकों का सेशन किया है, हमने वैसे वंचित बच्चों को जो स्कूल से ड्रॉप आउट है उनसे उनको जोड़ने का काम किया है, साथ साथ हम सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। ये चुनौतियाँ, ये चैलेंजेज आपको उस दिन देखने को मिलेगा। हमने कई फेस ऐसे किए हैं जब शादी तय हो गई है, बारात आने वाली है और उसकी सूचना हमें मिली है, और इस तरह के कम गोड्डा जिला में पिछले 3 साल में हमने दर्जनों शादियां रोका है जब बारात आने की सूचना हो जाती है उस क्रम में।
0: कन्फ्रंटिंग दिस रियलिटी रिक्वायर्स मोर देन जस्ट इंटरवेंशन, इट रिक्वायर्स अ यूनिफाइड फ्रंट, एंड दैट इज व्हाई द एनजीओ साथी convened a high-level meeting in Godda ahead of Akshaya Tritiya, bringing together child marriage prohibition officers, Anganwadi workers and leaders from Panchayati Raj institutions. By apprising each of the stakeholders of their specific legal and social roles, the campaign transforms individuals and institutions into a collective shield. Central to this strategy are the Kishori Samuhs, empowered groups of adolescent girls mentored by Anganwadi workers. Here, the girls find a safe space for health checkups with local sahiyas and auxiliary nurse midwives or ANMs, gaining the knowledge of bodily autonomy to advocate their own futures.
6: हाँ, पहले तो होता था, लेकिन अभी बहुत सुधर गया है। पहले होता था, लाठीबाड़ी में होता था पहले, लेकिन अभी उतना नहीं हो रहा है। करीब 3-4 साल से, मैंने अभी उतना कम उम्र में शादी नहीं हो रहा है, बताए भी हैं और जानकारी हो रहा है, इसीलिए हम लोग बताते भी हैं, बोलते भी हैं, गार्जियन से भी मिलते हैं, सहयोग मिलता है कि हाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद योग होगा, उसके बाद ही शादी देंगे, ऐसे बोलता है।
0: साथी एनजीओ अ जेआरसी पार्टनर इज एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इन झारखंड। दिस फाइट इजंट लिमिटेड टू द वीक्स लीडिंग अप टू अक्षय तृतीया, इट इज अ ईयर राउंड क्रूसेड through street plays, candle marches, children's rallies and pledge ceremonies, Sathi is working to shift the consciousness of entire communities.
7: पूरे पंचायत में जहाँ भी शादी होती है, लगभग लोग हम लोगों को निमंत्रण भी देती है। तो जैसे निमंत्रण देते हैं तो हम लोग उसके अभिभावक से तुरंत पूछते भी हैं कि आपकी बच्ची या बेटा का क्या उम्र है।
0: After the break, we will see how this heightened awareness is translating into affirmative action. It is a movement that is not only changing mindsets across these villages, but is empowering communities to use the rule of law to prevent child marriage before it occurs.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: 21 days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
5: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
4: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Dicoid sahab, aise mat kijiye. Suddenly people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to do.
6: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
4: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
5: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आर प्योर मसाला।
4: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats.
10: In the fight against child marriage, our journey continues in Sambhal, Uttar Pradesh, where the fight against child marriage is finding its strength in the front line of rural healthcare and community outreach. Outside the collectorate, hundreds of Anganwadi workers have gathered following a specialized workshop led by the NGO Prayatna. Presence in such significant numbers is a testament to the momentum driving the Child Marriage Free India campaign. Because Anganwadi workers operate in close proximity with families and communities, they are often the first to identify signs of a planned child marriage. This session is designed to sharpen that vigilance ahead of Akshaya Tritiya, equipping them with the knowledge of existing laws and intervention strategies needed to act decisively. To reinforce this mission, the workshop also recognizes and celebrates those who are already leading the way. 15 Anganwadi workers are also being felicitated for helping stop child marriages in their villages. At the center of these mobilization efforts is the Prayatna NGO, seeking to eliminate child marriage from Sambhal.
11: Sambhal jile mein bal vivah ka jo star hai wo 21% jo bal vivah ki dar hai Sambhal mein wo hai, aur uske liye hum bal vivah ke liye khatm karne ke liye हमने बाल विवाह मुक्ति रथ का संचालन किया, जो भारत का 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान था उसके अंतर्गत, और उसके हमें सार्थक परिणाम भी देखने को मिले। जिस दिन हमने बाल विवाह का जो रथ लॉन्च किया था, उसी दिन हमें 3 बाल विवाह की शिकायतें हमारी जीआरसी की हेल्पलाइन पर प्राप्त हुई, और उसमें से 2 शिकायतें ऐसी थीं जो उन बच्चों ने की थी जिनकी शादी हो रही थी। उसमें से एक लड़का था और एक 16 वर्ष की लड़की थी, और जो लड़का है उसकी शादी को रुकवाने के लिए हमने संभल जनपद का पहला इंजंक्शन ऑर्डर जारी करवाया है।
10: दिस ब्रेक थ्रू, द फर्स्ट लीगल इंजंक्शन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज इन संभल्स हिस्ट्री इज अ वॉटरशेड मोमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट। It is the direct result of targeted action that have moved the community from silent awareness to legal intervention, successfully utilizing the law to halt the ceremony before it could take place. The presence of the district's highest administrative and paralegal officers at this workshop is not just a formality. This participation ensures that the law is accessible for each member of society.
12: मेरा मुख्य काम ये है कि लोगों को कानूनी जागरूकता देना और कानून में जो लोग सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं वो किन्हीं कारणों से वो अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाएं, कानूनी किसी भी मामले में उनको विधिक सहायता से उनके न्याय निर्णय अर्थात उनके अधिकारों पर विपरीत असर न पड़े। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये भी करता है कि जो बच्चे हैं हमारे बाल विवाह हैं उनकी अगर कोई सूचना हम लोगों को मिलती है और हमारे कार्यालय में कोई प्रार्थना पत्र आता है तो चूंकि वह संस्था पूरी तरह से जुडिशियल संस्था है तो उन पर स्टे दिलवाना, उन पर रुकवाने का आदेश कराना, साथ ही साथ इससे भी महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों का ये रहता है कि कैसे ऐसे अपराधों के बारे में जो है कानूनी जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाए।
10: Beyond specific awareness days, engaging with communities is a constant task aimed at addressing the severe impact of child marriage. When approaching families who may feel pressured by poverty to marry off their children, it is essential to link them with financial schemes and government incentives. By providing these tangible solutions, the campaign offers families a viable alternative to child marriage, ensuring that economic hardship does not dictate a child's future.
11: जब हम उन्हें समझाते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएं और गरीबी के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जैसे कन्या सुमंगला योजना, तो हम उन परिवारों को उस योजना का लाभ देने के लिए हम उनको अप्लाई कराते हैं उसमें। और दूसरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, और हम उनको इनके बारे में जब जागरूक करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। और बच्चियों ये जो योजना है इन योजनाओं ने बाल विवाह को बहुत हद तक कम किया है।
10: Each of these partner NGOs of the Just Rights for Children show the power of collective action. They tell us that a helpline number, a poster, a conversation can be the first and the most critical step in protecting a childhood. Akshaya Tritiya is when the momentum reaches a crescendo, but the relentless effort by each of the 270 plus NGOs across India is a year-round commitment to a whole of government and a whole of society accountability, ensuring that protection remains constant long after the festival concludes. The dream of a child marriage-free India is inevitable and within reach. And it's through empowering each of our districts and their NGOs that we will reach this goal in time.

0: पांच महीने में ही उसने पागल हो गई। 30 साल से मेरे साथ में, जब पागल ही थी वो। पढ़ी लिखी नहीं है तू, जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए है। वो लंदन जाने वाली थी। अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी में काम करेगी, बाहर जाएगी, उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी। तू गंवार है तू, तेरे को बोलना नहीं आता। हम तो दोनों को सजा चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं।
1: बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हमें, यहाँ अन्याय की उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ की परवाह नहीं की जा रही। हम अगर आपको आपने इसको एंटिसिपेटरी बेल को आपने ट्रायल कोर्ट बना दिया, जैसे कि ट्रायल शुरू हो गई है, आपने उसका ट्रायल जैसे कंडक्ट करके आपने जो है इसमें उसको बेल ग्रांट दी। हम चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की निष्पक्ष जाँच हो, उसके लिए जाँच के लिए उसकी बॉडी हमारा अधिकार है कि उसको एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया जाए।
2: And that's all that we could pack in this edition. It's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and updates continue here on NDTV 24/7.

0: study by itself is entirely unique. Nothing like this has been ever done. And eventually, what we'll be able to do is that we'll be able to take this to actually form policy level, intervention, which will really help transform the lives of the sanitation workers, help set up systems in place which can actually, which are trackable, traceable, in order to enhance and extend the life of the sanitation workers.
1: और आपने बताया कि क्या काम किया जा रहा है उस क्षेत्र में, तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट पावर ऑफ एट प्रोग्राम की, जो एक ऐसा मॉडल है जो सैनिटेशन को सस्टेनेबल, सेफ और रिस्पेक्टफुल बनाता है.
2: The Power of Eight is a joint initiative by Dettol and Harpic to tackle India's pressing hygiene and sanitation challenges. The program focuses on one of the most critical areas of impact, schools, where the future of India is shaped. Aligned with the Government of India's Swachh Vidyalay program, the Power of Eight service addresses these gaps across eight key dimensions: funds, scheduled cleaning, manpower, supervisors, hygiene infrastructure, drain declogging, life tracker, school data. The initiative not only fills critical gaps in sanitation and hygiene, but also provides structured, dignified employment for sanitation workers. Building on the Harpic World Toilet Colleges, which equip sanitation workers with modern cleaning skills, safety training and dignified employment, the Power of Eight program ensures that schools are staffed with trained professionals, provided the right tools, protective gear and accountability systems to keep facilities clean on a regular basis. To bring about sustainable change, the program integrates interactive hygiene education in schools developed by Sesame Street, featuring India's first indigenous Muppets, Neela Jadugar and KK Kitano. Through engaging formats like pop-up books, comics, bookmarks, posters, wall paintings and curriculum sessions, children learn about cleaning toilets after use, hand washing with soap, respecting gender-segregated toilets, supporting teachers and staff in reinforcing healthy habits. The Harpic Safe Sanitation Program is creating a model of impact that unites infrastructure, behavior change, and workforce development. By empowering sanitation workers and enabling healthier learning environments, the Power of Eight contributes to both India's sanitation mission and educational priorities, building a cleaner, safer future for children, teachers, and communities.
3: ਜਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੀ ਹੈਲਥ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਕਿਆ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ? ਆਪ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਰੀਅਰ ਵੀ ਹੈ.
4: ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਹਮ ਲੋਕ ਘਰ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਪੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋ. ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸੀ ਥੀ, ਜਬ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਪਤਾ ਚਲਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਵੀ ਦੇਖਾ, ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਨੇ ਕੋ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਤੋ ਵੇ ਮੈਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਆਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੂੰ. ਤੋ ਸਰ, ਜੋ ਹਾਰਪਿਕ ਵਰਲਡ ਟੋਇਲਟ ਕਾਲਜ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਨੇ ਸੇ ਮੇਰੇ ਮੇਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ. तो मैं कॉन्फिडेंस, जो कमी कहते हैं ना, मैं आ जाती है घर के हालात देखने के बाद. तो मेरे को ये लगता था कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूं और अपने हस्बैंड की कैसे हेल्प करूं, क्योंकि अब आपको उस बीमारी के दौरान खर्चा तो आपको पता है इस बीमारी में काफ़ी आ जाता है. तो हमारी जो कंडीशन थी काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, तो अगर हमारी कोई हेल्प करना भी जाता था तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि मेरे में कमी रह गई है अगर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ. तो अब जब मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हूँ, तो सर मैं अपने बच्चों का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखने लगी हूँ, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रही हूँ आज. लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हूँ, खास करके हमारे जो रैकेट वे हैं, रवि सर हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो उनका ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. जो हमारे जैसे जो वर्कर हैं, उनको कहीं पर भी पूछा नहीं जाता. सर, आज मैं आपके सामने इस मंच पर हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ. रैकेट की वजह से हूँ और रवि सर की वजह से हूँ।

0: तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि मेरे में जो बदलाव आया, सबसे बड़ा बदलाव जो मेरी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है सर। आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं स्कूलों में जाती हूँ, बच्चों की जो स्माइल होती है ना वो उनको देखते तो मैं और भी ज़्यादा, मतलब मेरे में हौसला आ जाता है कि मैं जो सेवा कर रही हूँ वो मेरे को करनी है, बस मैं बच्चों को खुश रखना, उनको स्वस्थ रखना है। सब उनकी स्माइलें जो हम लोग देखते हैं तो उससे मेरे को तो बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है।
1: जसविंदर जी, आपकी जो आप बीती है ना वो ज़्यादा इंस्पायर करती है लोगों को, आपको और इंस्पायर करती है क्लीनलीनेस की तरफ, हाइजीन की तरफ जाने के लिए। तो आपकी जो जीवन की यात्रा है बहुत इंस्पायरिंग है लोगों के लिए। रतन के पास आते हैं। रतन, आपने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा है, सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा है आपने?
2: सर, सबसे पहले मैंने 2018 में जब ट्रेनिंग किया तो सबसे पहले वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से मुझे आत्मविश्वास मेरा बहुत सारा बढ़ा है जो पहले नहीं था। और मेरा भी आत्मविश्वास से ऐसा मैं कर रहा हूँ कि मैं खुद सफाई कर्मचारी को हार्पिक्स वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से सिखाने का मुझे जो मौका मिल रहा है तो वो मौका मैं बहुत अच्छे से मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि सफाई कर्मचारी की तरफ मेरे तरफ देखने का जो नज़रिया था समाज का वो पहले नहीं था, जो अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। और इस दौरान से मैं सफाई कर्मचारियों को और अच्छा सिखाने का मौका मुझे दे रहा है तो मैं और अच्छा अच्छा सिखाने का उनको प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे जो मंच पे जो आने का जो मौका जो दिया, यह आज वो टॉयलेट कॉलेज दिया क्योंकि मैं खुद एक सफाई कर्मी था। आज सफाई कर्मी और डायरेक्ट स्टेज पर आना ये बहुत बड़ी बात है, ये मुझे आज बहुत बड़ा मौका मिला है। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रैकेट का और हमारे श्रीमान रवि सर का कि जिन्होंने हमें इस मंच पर आने का मौका दिया है, तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
3: Well, on that note, Ayushman, I think how opportunity brings amount of joy and changes lives. Our campaign talks about being the change. We are the change, right? But well, that's where the change really begins. On that note, we're going to be taking a really short break. So please don't go away.

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
4: What we are sitting inside.
5: Welcome back. You're watching NDTV Detol Banega Swasth India. The journey from manual scavenger to sanitation entrepreneur is truly the story of a new India. By bridging the life expectancy gap, you're not just helping individuals, we're strengthening the backbone of public health and the economy.
6: Exactly, Ayushman, because dignity is not charity. Dignity is a right. Agli baar jab aap kisi sanitation worker ko dekhein, unhe sirf safai karmchari nahi, balki nation builders ki nazar se dekhein. Clean toilets are not just facilities. They shape education, health and opportunity, and we should be grateful to the sanitation workers. Absolutely. For the work they do for all of us. Now, girls stay in school only when the toilets are clean, safe and dignified.
5: And that dignity is protected every single day by sanitation workers who prevent diseases, reduce UTIs and keep communities healthy. So Sahil, aapse puchna chahta hu ki aapki findings jo infections ko lekar schools mein hai Patiala ke, wo kya rahi hain?
7: So, हमारी जो स्कूल फाइंडिंग्स हैं, दे इंडिकेट दैट ऑलमोस्ट 30% ऑफ द स्कूल टॉयलेट्स आर डिसफंक्शनल एंड ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट डू नॉट हैव द सोप्स इन स्कूल्स एंड यू नो दैट इज़ अ क्वाइट अ सीरियस कंसर्न बिकॉज दैट लीड्स टू नंबर ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेज लाइक डायरिया, रेस्पिरेटरी इशूज एंड UTIs. So that, you know, entirely indicates that it's very important not just to have the toilet infrastructure in place, but that infrastructure needs to be functional, that infrastructure needs to be hygienic, and it needs to be available for the next person to use.
6: हमारे पास समय कम है जसविंदर जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे आपके जैसे जो इतने sanitation workers हैं, आप उन्हें क्या message, आप उन्हें कैसा कैसे उनका आप हौसला बढ़ाएंगे?
8: मैम, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी हिराश मत होइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और जो हम लोग सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा ऐसी जारी रखनी चाहिए. वैसे तो बच्चों को सबसे पहले हम लोग जो भी गंदगी होती है, जो कीटाणु के बारे में हमारी जो टीम है वो बताती हैं, तो उससे काफ़ी प्रभाव भी पड़ा है बच्चों पे भी और माँ बाप पर भी. तो वो हमें काफ़ी, मेरे को ना वहाँ पे प्रशंसा पत्र भी देते हैं वो लोग, अगर वह उनके पास जाती हूँ उनको बताते हैं हम लोग, तो वहाँ पे लोग जो बच्चे हैं वो हमें भी बोलते हैं कि थैंक यू भी बोलते हैं कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं. तो जो हमारे वर्कर हैं वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, ये नहीं है कि यहाँ के पंजाब की है, महाराष्ट्र की, और यहाँ भी हमारा काम चल रहा है सैनिटेशन का, तो वहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो उनको यही कहना चाहूँ कि आप मेहनत करते रहो तो आगे बढ़ते रहो. थैंक यू.
5: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रतन जी, आपसे पूछना चाहता हूँ. पहले तो ये बताना चाहता हूँ, एक फिल्म की थी मैंने आर्टिकल 15, उसमें एक सैनिटेशन वर्कर को दिखाया गया था जहाँ पर एक मैनुअल स्कैवेंजर नाली के अंदर जाता है और वो बाहर आता है. पर मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आपके पास वो गियर होता है वेन यू क्लीन समथिंग, या फिर आपके पास प्रॉपर गियर होता है किसी भी सैनिटेशन वर्कर के पास, ताकि बीमारियाँ कम हो, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, ऐसा कुछ गियर होता है आपके पास?
6: सेफ्टी किट के बारे में, बात जो आपको दिया गया है.
9: सेफ्टी
5: जी.
9: उधर जो अभी जो ट्रेनिंग के बाद जो हम उनको सेफ्टी के बाद बताते हैं, सेफ्टी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं
5: जी,
9: क्योंकि जो ट्रेनिंग में हम उनको जो पढ़ाते उनका ऐसा नज़रिया है कि बाबा ट्रेनिंग लेते तो ये सेफ्टी के बारे में हमें जो बताते वो अभी अच्छा फील करते हैं.
5: ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा है?
9: जी, बहुत फर्क पड़ रहा है. बहुत फर्क पड़ रहा है उनको, कि हम जब बस्ते में जाते हैं मोबिलाइजेशन करते समय, तो जब हम उधर जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग को आना चाहिए, और आप हम अच्छे से हमको बर्ताव देते उधर, अच्छा सिखाते, अच्छा ट्रेनिंग देते, तो इसलिए वो प्रॉन करते अच्छा कि हम आना चाहिए उधर तक.
6: Obviously, safety brings a different aspect, right? Again, the confidence, you know what you're working in, where you're going in. Well, thank you so much. आप सबने अपनी जर्नी शेयर की. जसविंदर जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू साहिल, थैंक यू मिस्टर चोगल फॉर कमिंग ऑल द वे एंड एक्चुअली पुटिंग सैनिटेशन स्टोरी ऑन द मैप हियर ऑन आर कैंपेन. वेल आयुष्मान, A truly healthy India is not built in hospitals. It is built in clean toilets, through protected workers, and with dignity at the center of health. The blue dot is not just a symbol of sanitation. It indeed and surely is a symbol of respect.
5: And sanitation workers are the guardians of our health, our dignity, and our future.
6: Thank you so much once again, Ayushman, for joining us in this very, very critical conversation. Thank you.
5: Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
3: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: मेरा नाम सिमू है और मैं 23 इयर्स की हूँ और मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली के थ्रू खेलती हूँ। इधर आ, इधर आ।
1: हेलो दी।
0: हेलो, कहाँ से आई तू?
1: हेलो सबको,
0: हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे रिहाना।
0: हैप्पी बर्थडे।
2: हाथ मिला।
3: थैंक यू।
0: चॉकलेट दे।
1: चॉकलेट दो। चॉकलेट कहाँ है तुम्हारा?
3: हेलो सुनीता,
0: पूरा रियलिटी खोल देती है ये।
1: और क्या,
0: मैं हाथ से नहीं खाऊँ, हाथ से खाऊंगी। इस वीडियो में हमारा पोहा आएगा अभी। ये सोचेंगे ना न्यूट्रिशन फूड है। चाहिए
1: मेरे को स्पून।
0: मैं असम में पैदा हुई थी। मम्मी और भैया है, पापा तो छोड़ के चला गया।

बस नंबर 70 रहने से बता देना, 75 और 78। हाँ मोती नगर। कभी कभी ऐसा होता है कि अनसुना कर देते हैं लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ तब मुझे फीलिंग्स आती यार, काश मुझे दिखता तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। भैया मोती नगर उतार देना। असम में मेरा घर कठहतुली कछाड़ी गांव, 4 नंबर वार्ड। असम से दिल्ली आना मेरा एजुकेशन के पर्पज़ से आना हुआ है 2019 में। क्रिकेट खेलना 2022 में मैंने शुरू किया। मैं हॉस्टल में जब रहती थी मुंडिका जब रहती थी तो लड़कियां बातें करते थे कि तुमको हॉस्टल में तुम मतलब उन लोग बात करते थे कि मुझे अगले अगले स्टेट में जाना होता है, खेलना पड़ता है। तो मैंने भी बोला कि मैं भी जाऊँगी घूमने के लिए, तो मैं घूमने के पर्पज़ से गई थी। लेकिन उनमें ही मैम ने मेरा स्किल देखा, उसने मुझे बैटिंग करने के लिए बोला, मैंने बैटिंग किया तो उसने मेरा स्किल देखा तो उसने बोला है कि तुम कर सकते हो, तुम कर लो। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मुझे मन नहीं करता है। हाँ तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला है कि तुम कर सकते हो, तो मैंने उससे मेरा कंटिन्यू हुआ है। व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले लाइक नो वन वाज सपोर्टिंग मी, एवरीवन वाज टेलिंग बीइंग अ गर्ल बीइंग अ ब्लाइंड हाउ विल यू एबल टू प्ले, बट दैट आई शोन इनटू एक्शन।

have reached Barakhamba Modern School, Delhi. We have come here because before the World Cup, we have done practice. And as I am from Delhi team, all Saturday, Sunday, I come for practice. Because of this, I am winning the World Cup. This is the specs, the person who can see the light. After wearing this, he or she can't see anything. You can see fully discovered. So nothing is visible. Our game depends on three categories. Those categories are B1, B2, B3. B1, they are totally blind. B2, up to 3 meters. And B3, up to 6 meters. I like to bet. First, we need to just see the weight of the bat, which according to us. So this bat is perfect for me. And I'm just holding, as I am B1 category. So I can hold this way. Because when the ball comes directly, it will hit the stump. So before that, I just need to keep my left leg this. This is for all batsmen, B1, B2, B3. When the bowler says that they're ready, then I have to be ready with this position. So at the time when the bowler says that play, after just the, when they say the play, my bat should be like this. Because if we are not doing this also, no, the ball will come and hit to our bat. And as soon as the ball reach here, we need to just fully roll it. This is the position for B1. You can see the ball again, you can hear the sound also. This ball is the main thing through which we play. First, we need to focus on the sound. When the bowler says that ready bat, that means I'm ready. Like, so when the bowler says play, at the time play means the ball is relieved. Ball jab chhod dete hai na, to hum log ko at least hum ginti karte hai ek. Ginti karte hai aur awaaz mein awaaz matlab ball ki awaaz hum sunte hai, focus karte hai. Kabhi kabhi kya hota hai ki hum ball ki awaaz pata nahi chalta hai. To hum bat se nahi, hum takkar nahi laga sakte ball ko bat se. तो वही है, वी हैव टू दो ही चीज़ है, फोकस करना है और अपना मन में एक इशारा रखना है कि अच्छा लो अभी इसने बॉल छोड़ दिया, तुम तो अभी आने वाला है. सो ये दो ही चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाते हैं. प्ले ब्लाइंड क्रिकेट जो कहा जाता है ना, उसके कीपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम बॉलिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हैं, तो वो कौन देखता है? कीपर. जब हम बॉलिंग करते हैं, हम पहले स्टंप छू कर देखते हैं कि हम सीधा है कि नहीं. इतना डिस्टेंस रखना चाहिए. ये दिस इज़ द मेजरमेंट. हम जब बॉलिंग करते हैं तो कीपर को पूछते हैं कि हमारा हाथ सीधा है कि नहीं, इज़ इट आवर हैंड स्ट्रेट. सो चेक द कीपर. तो कीपर बोलेंगे राइट लेफ्ट, और कीपर पूरा स्ट्रेट कराएंगे उस हाथ को. तो स्ट्रेट करने के बाद तो हम मतलब तैयार है फेंकने के लिए. बोल रहा है हियर हियर हियर, मतलब इधर इधर इधर फेंको. तो वो डायरेक्शन देंगे हियर हियर हियर. उसके बाद हम रेडी बोल के प्ले बोल के फेंक देते हैं. प्ले. वाह वाह. व्हेन आई जॉइन फर्स्ट टाइम, मुझे थोड़ा प्रेशर लगा था कि यार मैं कैसे खेलूँगी, हाउ विल आई प्ले यार, इट्स सो टफ. व्हेन आई सो दैट गर्ल्स आर प्लेइंग, देन आई जस्ट फील माई सेल्फ दैट वाई आई कैन प्ले, आई ऑल्सो कैन प्ले. इफ दे आर एबल टू प्ले, देन आई ऑल्सो.

0: A desperate late-night phone call, a daughter in distress, and then silence. This is the story of Twisha, a 33-year-old who told her mother about the harassment she was facing at her matrimonial home before abruptly disconnecting the call when her husband entered the room. Within minutes, her family's panic turned into horror. Repeated calls went unanswered, and soon came the chilling message. Twisha was not breathing. Now, a post-mortem report citing multiple anti-mortem injuries has deepened the mystery around her death, as grieving family members demand justice and unbiased investigation. The post-mortem report stated that Twisha died due to anti-mortem hanging by ligature, indicating she was alive at the time of hanging. It also recorded multiple anti-mortem injuries on different parts of her body. Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, a retired judge, is under scrutiny after the family alleged harassment, delayed response, and fears of influencing the investigation. Twisha's brother, Major Harshit Sharma, who is serving the Indian Army officer, he has said that Twisha was forced to terminate her pregnancy and that questions were raised on her character. As we speak, the husband and the mother-in-law of Twisha are out on anticipatory bail. Twisha's father has called the bail unfair, saying that the legal background of the family is actually protecting the in-laws.
1: सिंह क्रिमिनल लॉयर है तो इस वजह से उसको सारे बचाव का सब तरीका पता होगा सारी किस तरह से बचा जाता है तो उसने क्राइम किया है शुरू में तो कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी शुरू में नहीं एक दो महीने बाद वो टॉर्चर करने लग गया था शादी को 5 महीने हुए हैं 5 महीने हुए मेरी बेटी को अभी वो उसकी जो कपड़े भी उसने नहीं खोले उसे जब तक तैयार कुछ एंजॉय नहीं कर पाई कहीं गई नहीं वो 5 महीने में ही उसने पागल हो गई 30 साल से मेरे साथ में जब पागल नहीं थी वो तो पढ़ी लिखी नहीं है तू जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए है वो लंदन जाने वाली थी अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी में काम करेगी बाहर जाएगी उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी तू गंवार है तू तेरे को बोलना नहीं आता हम तो दोनों को सजा चाहते हैं मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं
0: The final 15 minutes before Twisha's death have become the biggest focus of the investigation. According to the family, Twisha called her mother at 10:05 p.m., spoke about the alleged harassment at her matrimonial home, before the call suddenly disconnected when her husband entered the room. The family then repeatedly tried contacting Twisha, her husband, mother-in-law, but received no response. At 10:15 p.m., mother-in-law Giribala Singh answered the call and was asked to immediately check on Twisha. Just 5 minutes later, at 10:20 p.m., the family was informed that Twisha was not breathing, raising serious questions about what happened during those crucial minutes. All right, so this is Ashish Sharma, who's Twisha's cousin, and Navnidhi Sharma, who's Twisha's father. Both are joining us on the broadcast. Namaskar, bahut bahut shukriya aap logon ka ki aapne humse baat ki. Aapke parivar ke liye ek bahut mushkil samay hai. Par main aapse ye janna chahungi ki abhi tak police ne jo bhi karyawahi kari hai, usse parivar kitna santusht hai aur इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको प्रभावित कर रहा है आशीष जी
2: यस मैडम एब्सोल्युटली द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड The moment we got the call that she is no more, the three words that were spoken to us, we immediately started from Delhi, from Ajmer, the family came here. And after coming here, all we are seeing, all we have witnessed is horror. When we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the National, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered. That too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested. The proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed. There must be some certain reason behind it. What was the reason? Have we committed any crime? That a mob of people was just outside the chamber of the justice, heckling us, pinching the female members of the family. The grieved mother was continuously commented upon that daughters, they are killing themselves for the sake of money, for extracting money thereafter. It was only when the Indian Army came for our rescue, when we were cordoned, that we felt protected. And more importantly, and beyond our imaginations, the bail was granted. No idea that whether in such cases where the death has been that has occurred soon, it's just
0: right
2: 5 months,
0: right,
2: and the bail has been granted
0: ceremonies
2: on grounds which are totally unexplainable, non-admittable. Even after that, we are continuously reaching out to authorities. Not a single person in the entire state has the courage to stand along with us. We have been sitting outside the Honorable Chief Minister's house for a very short hearing, just to request him, please do something for this. Please get it. Please get the authorities, do their work.
0: Ashish, please allow me, as I hear your ordeal and my empathy and my understanding with you. I have been a student of law, and I am a student of law, and I know how difficult it is for families to get an FIR registered in this country. And especially when somebody in front of you has the power and might and influence over the system. Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियाँ थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
3: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं।
0: जी,
3: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीजन हो जाता है कई बार, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो MP के लोकायुक्त हैं, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की देखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएँ। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया। ये एक बहुत ही संगीन मामला है, हम न्याय की उम्मीद खो चुके हैं। अगर यहाँ पर लोकायुक्त डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो इनका रिश्तेदार है, और भी बहुत सारी जगह इनके हॉस्पिटल्स में, सारे एडमिनिस्ट्रेशन में इनके लोग फैले हुए, इनके रिश्तेदार फैले हुए, हमें नहीं लगता हम यहाँ से कुछ न्याय निकाल पाएंगे, जहाँ पर हम CM भी जो लाचार दिखे हमें।
0: नवनिधि जी, पुलिस की भूमिका के बारे में कुछ बताइए।
3: मैं यहाँ
0: मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस की इसमें किस तरह की भूमिका थी?
3: जी पुलिस तो, जी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियरी के अंडर आता है, हम न्याय तो जुडिशियरी दे रही है हमको ना, जुडिशियरी, जब पुलिस जो है किसके अंडर में काम कर रही है, जुडिशरी के अंडर में काम करिए। लोकायुक्त के नीचे क्या कौन नहीं है यहाँ पर, आप देखिए ना, इतनी इसकी ग्रेविटी देखिए कि लोकायुक्त के सामने कौन खड़ा हो सकता है। आज इस सिस्टम के अंदर लोकायुक्त कितनी बड़ी पावर रखता है, अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व है तो किसकी अथॉरिटी है कि जो उसके खिलाफ जाके काम करे या उसके सपोर्ट में काम ना करे। बोलने को तो सब बोलेंगे कि हम जो है, अब बोलते हैं कि हम सब अच्छा काम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, पर आपने देखा कि हमारा आज तक कोई काम अच्छा नहीं हुआ। अभी हम PM2 के लिए भी कितना संघर्ष कर रहे हैं, हम ऐसी स्थिति में पहुंचाया जा रहा है कि हम अपने आप ही दम तोड़ते हैं, ये सिस्टम एकदम ब्लॉक कर चुका है हमको। आज केवल लोगों ने, हमारी उम्मीद खाली अब बची है CGI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि जो इसमें इंटरवेन करके हमारे को इस बड़ी दुविधा से निकाल सकते हैं, इसको रेयर केस मान करके इसकी उनकी अध्यक्षता में ही SIT गठित हो, जिससे इसकी जांच हो, ताकि हमारे को निष्पक्ष जो है जांच का अवसर मिले। बॉडी को एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम 2 के लिए जल्दी से जल्दी भेजा जाए, ताकि साक्ष्य सबूत जो है कुछ तो बचे रहे।
0: नवनिधि जी, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या सुप्रीम कोर्ट को कोई चिट्ठी, कोई लेटर पिटिशन दी है अभी तक?
3: जी जी, हमने अभी उसको एप्लीकेशंस पहले भी लिखी हैं, अब दोबारा से हम उनको लिख रहे हैं एप्लीकेशंस, और हम अपनी रिक्वेस्ट लिख रहे हैं उनसे, हम उनको सारी स्थिति से अवगत करा लें, और हम मीडिया के माध्यम से भी उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी इस चीज़ को, इस प्ली को कंसीडर किया जाए। एक गरीब आदमी इतने बड़े लोगों के साथ में के सामने कैसे लड़ेगा, और एक जुडिशियल सिस्टम कितना खतरनाक होता है एक आम आदमी के लिए, कि आपकी फाइल लगी नहीं है, कि कोर्ट फलानी जगह लगेगा, इतने देर में मेरे बेटी का शव जो है डिकम्पोज हो जाएगा, और जो साक्ष्य मिल सकते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मुझे बहुत डर है।
0: आशीष जी, आप मुझे थोड़े से डिटेल्स बताइए, पुलिस ने जो FIR रजिस्टर करी है, व्हाट काइंड ऑफ FIR इज इट, व्हाट आर द ऑफेंसेस दैट दे हैव रजिस्टर्ड इन दिस FIR?
2: तो मैडम, ये जो FIR है, ये इट्स शॉडी FIR वेयर दी चार्जेस हैव नॉट बीन एडिक्वेटली फ्रेम्ड, व्हेन देयर इज अ एब्सोल्यूट एंड वेरी क्लियर फाउल प्ले, नो प्रोविजन टू इन्वेस्टिगेट अ मर्डर हैज बीन मेड इन दैट FIR।

0: better that we are putting up a fight. And as he mentioned, that this entire system is ensuring that we get exhausted. This entire system, surprisingly, as I mentioned earlier also, that not a single authority has taken for the last 5 days. The media has been covering our ordeal, but we have not been approached by anyone. Whoever we approached either denied us a meet, as happened today, or simply assured something which was in namesake.
1: Navnidhi ji, jab bhi koi pita apni beti ki bachchi ki shaadi karte hain to wo to acche se acha ghar acche se acha parivar dekhkar karte hain, magar hamare samaj mein ek anti dowry act hone ke bawajood, ek dahej ke khilaf ek kanoon hone ke bawajood bhi len den ki parampara ya dahej dene ki parampara aaj bhi chali aa rahi hai aur isme koi do raaye nahi hai, ye khuleaam hota hai, aaj bhi hota hai. Sare matrimonial disputes mein hum stri dhan dowry inhi sab cheezon ke bare mein baat karte hain jab court mein bhi masla jata hai. Shaadi se pehle kya kisi bhi tarike ki dahej ki maang ya kisi bhi tarike ki aapke samne koi shart ya koi condition rakhi gayi thi kya? Navnidhi ji,
2: ऐसा है, conditions ऐसी पैदा की जाती हैं कि बगैर मांगे आप दे दीजिए, ऐसा फोर्स किया जाता है आपको कि आप समझ जाइए कि आपको मांगता, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कानून है, तो दहेज मांगना अपराध है. ये तो डायरेक्ट तो नहीं मांगते दहेज, पर इनडायरेक्टली इतना प्रेशराइज कर देते. जैसे बारात के दिन भी इन्हीं ने किसी बात पर गुस्सा होकर के जो है इशू बना लिया कि हम बारात वापस लेके जाएंगे, तो भागे भागे गए लोग, सेटल करके आए. तो ये सेटलमेंट क्या है? ये सेटलमेंट एक डाउरी तो है. और अगर आप देखते हैं कि लड़की जो है हमारी, जब तक जॉब कर रही थी तब तक वो थोड़ा ठीक था, और जैसे ही उसकी जॉब छूटी है उसके बाद तो इन्होंने प्रताड़ना और टॉर्चर हर तरीके का चालू कर दिया था. ये एक बहुत ही निम्न कोटि की जो है एक शर्मनाक हरकत है जो सामने दिखने को आ रही है. ऐसा एक कैमिलियंस फैमिली है सर, कैमिलियन फैमिली है जो पूरा डिज़ाइन करके चल रहे हैं. कोई आदमी अगर क्रिमिनल माइंड सेट का है वो पहले से ही प्रिपेयर, और वो लॉयर भी है और वो जज भी हैं, तो उनको पता है कि उनको क्या क्या चीज़ प्रिजर्व करनी है कि आने वाले टाइम के लिए वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें. आप अगर इनकी सारी बातें देखेंगे, अगर हम इनके सारे कोर्स ऑफ इवेंट देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने मर्डर की प्री प्लानिंग की हुई थी.
1: तो आप कह रहे हैं कि खुले तौर पर उन्होंने आपसे कोई मांग नहीं करी थी, मगर ना मांग के भी जो चीजें मांगी जाती हैं हिंदुस्तानी शादियों में, वो मतलब आपके साथ
2: ये है कि खुले तौर का मतलब ये है कि आपने जैसे बताया ना, हाँ, प्रेशर करके, जैसे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से बारात चलाई, आपने हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई काम नहीं किया है.
1: नवनीत जी, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, क्या त्विशा ने आपको कभी खुले शब्दों में बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है, कोई फिजिकल हैरेसमेंट है, मेंटल हैरेसमेंट है? मेंटल हैरेसमेंट तो आपने मेंशन किया कि वो कर रही थी, बट क्या फिजिकली भी, क्या उसको शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा था?
2: जी जी, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. ये लोग वियतनाम जब अपने हनीमून ट्रिप पर गए थे, वहाँ पर इसको फ़ोन आया, त्विशा का फ़ोन आया अपने भाई के पास में, तो उसमें वो कंप्लेन कर रही थी कि कुछ गलती से वो टाइमिंग फ्लाइट की वो ढंग से पढ़ नहीं पाई और कुछ डिले हो गया था
1: जी.
2: तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ समर्थ को, उसने मतलब इतनी नव शादी के बाद एक मतलब हनीमून ट्रिप पे कपल जा रहा है, उसने एक बहुत बड़ा धक्का दे दिया उसको, लड़की को, बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही. तो उसका रोते हुए फ़ोन आया कि बोले यार ये कैसा हस्बैंड है कि जो अभी तो मैं हनीमून ट्रिप पे जा रही हूँ और इस तरीके से ये बिहेव कर रहा है ये. तो हर्षित ने बेटा भैया जो उसका समझ नहीं पाया, वो समझा, उसने समझाया कि यार हस्बैंड वाइफ की बात है, तुम लोग अब यार हो जाता है कभी कभी किसी का मूड ऑफ, पर दैट वॉज द इनिशियल स्टेज. आप जो व्यक्ति अपनी हनीमून ट्रिप पर इतना क्रोध प्रकट कर सकता है, तो उसके बाद तो आप आशा कर सकते हैं. इतने बार जो है लड़की ने बोला कि इस बार तरह तरह से ये अब्यूज़ करता था उसको, उसके पास अब्यूजिंग के बहुत सारे मेथड अडॉप्ट करता था. ये भी वो अपनी सहेलियों को उसने सीक्रेट टॉक्स बताई हुई हैं जो मैं अभी आपको टीवी पर नहीं बता सकता.
1: जी आशीष जी, त्विशा की जो इंस्टाग्राम की चैट्स होंगी या व्हाट्सएप चैट्स होंगी, उसने इस पूरे घटनाक्रम के पहले, इस दुर्घटना के पहले कई लोगों से बात की होगी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से आपको, आपके परिवार को अभी तक क्या

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: द फ्रंट लाइन्स ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
2: सो मेनी अटैक्स,
1: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
2: Welcome to Left, Right and Center.
1: Hard facts.
2: War-struck country.
1: Hard questions.
2: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine. In France, in Italy.
4: At Srinagar.
2: I am Iskandar.
5: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom, only on NDTV.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर प्योर मसाला।
9: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
2: so many attacks,
1: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
2: It's incredible.
1: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
2: Welcome to Left, Right, and Center.
1: Hard facts.
2: War struck country.
1: Hard questions.
2: In the Ukraine.
1: 30 years of trust.
3: In the Kargil area.
2: North Ukraine. In France. In Italy.
4: At Srinagar.
2: I am Srinagar.
5: Vishnu Shom for NDTV.
1: Vishnu Shom. Only on NDTV.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर प्योर मसाला।
9: भरोसा ऑन
10: Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurated the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital in Mastichak in Saran district. Take a look at this report.
11: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
12: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटिया लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
11: अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना, द प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू डिलीवर अफोर्डेबल आई केयर टू अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग रूरल हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग नेटवर्क। The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
12: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai, the business ke saath saath mein, ki seva hi sadhana hai. Aur seva hi sadhne ke mantra ke saath saath, hum hamara har prayas is tarah se rahega ki khali business ke liye hum yahan nahi aaye, uske saath saath mein hum seva karte hain, to wo hamare ko andar ki khushi aur milegi.
11: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर प्योर मसाला।
13: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: saying that the legal background of the family is protecting the in-laws.
1: सिंह क्रिमिनल लॉयर है तो इस वजह से उसको सारे बचाव का सब तरीका पता होगा सारी किस तरह से बचा जाता है तो उसने क्राइम किया है शुरू में तो कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी शुरू में नहीं एक दो महीने बाद वो टॉर्चर करने लग गया था शादी को 5 महीने हुए हैं 5 महीने हुए मेरी बेटी को अभी वो उसकी जो कपड़े भी उसने नहीं खोले उसे जब तक तैयार कुछ एंजॉय नहीं कर पाई कहीं गई नहीं वो 5 महीने में ही उसने पागल हो गई 30 साल से मेरे साथ जब पागल ही थी वो पढ़ी लिखी नहीं है तू जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए है वो लंदन जाने वाली थी अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी में काम करेगी बाहर जाएगी उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी तू गंवार है तू तेरे को बोलना नहीं आता हम तो दोनों को सजा चाहते हैं मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं
0: Earlier in the day, Twisha's father and cousin spoke to NDTV describing their ordeal. Listen.
2: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको प्रभावित कर रहा है आशीष जी
3: Yes, madam, absolutely. The moment we realized that our daughter has passed, the moment we got the call that she is no more, the 3 words that were spoken to us, we immediately started from Delhi, from Ajmer, the family came here. And after coming here, all we are seeing, all we have witnessed is horror when we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying. The continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police. We were made to run from pillar to post, and it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered. That too, in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure. In the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed? Not once, not twice, thrice, even the fourth time from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
2: Navnidhi ji, मैं आपके पास आना चाहूँगी. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया नवनिधि जी
4: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं
2: जी
4: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़

हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था।

0: ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया।
1: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurated the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
2: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
3: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटिया लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशंस इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
2: अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना, द प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू डिलीवर अफोर्डेबल आई केयर टू अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग रूरल हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग नेटवर्क। The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
3: Adani Group का एक मंत्र भी रहा है बिजनेस के साथ साथ में कि सेवा ही साधना है, और सेवा ही साधने के मंत्र के साथ साथ हम हमारा हर प्रयास इस तरह से रहेगा कि खाली बिजनेस के लिए हम यहाँ नहीं आए, उसके साथ साथ में हम सेवा करते हैं तो वो हमारे को अंदर की खुशी और मिले।
2: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau report, NDTV.
1: We are slipping into a very short break. News and updates continue on the other side.
4: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
5: Let's do it. Let's do it. Let's start.
6: Big news that we're breaking first here on NDTV.
7: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
6: We've got a picture of the letter.
8: The breaking story, we're jumping straight into it.
9: They do not want to be part of an experiment.
10: Show around and then come to me.
11: At the Nehru Stadium in Chennai.
12: Unconditional support.
7: Crime killer of TVK is here with us.
13: We've got Mr. Dinakaran with us here.
14: Veera, why aren't you also dancing?
7: Vijay is coming out, TVK chief.
6: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
1: Actor Rajnikanth has made a striking political remark, saying he would have won the 2021 elections had he contested. He clarified he holds no jealousy towards Tamil Nadu Chief Minister Vijay, but noted that expectations from Vijay remain significant among the people of Tamil Nadu. Rajnikanth further underlined that his personal friendship with Chief Minister M.K. Stalin goes beyond political lines. He His remarks come at a time of shifting political narratives in the state, where new alignments and rising figures continue to reshape the political landscape.
5: 100% beautiful.

0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल with रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
5: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
6: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping?
7: Hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. Second CNG hike in 2 days in Delhi NCR. Delhi CNG rate crosses rupees 80 per kg for the first time. Politics mount over neat paper leak. Opposition ups the ante against Education Minister Dharmendra Pradhan demanding his resignation. Actor Rajnikanth wishes good luck to Tamil Nadu Chief Minister Vijay, says he would have won 2021 polls had he contested, says people have a lot of expectations from the new Chief Minister. Politics over Madhya Pradesh High Court's Bhotshala temple verdict. Congress slams BJP, says Saffron Party only stirring a communal divide. This is the Prime Minister Modi's joint briefing with the EU chief and the Swedish Prime Minister. Prime Minister has thanked Sweden for Royal Order of Polar Star. Prime Minister says that the India-Sweden ties built on democratic values. Both nations see innovation as driver of growth, elevating ties to strategic partnership with Sweden. FTA is a new opportunity for investors and innovators. We thank Sweden for support during Pahalgam. The Prime Minister also says that Sweden too has zero tolerance for terror.
8: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
7: माय कॉलीग गजाली जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। गजाली, द की टेकअवेज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस।
9: See, first of all, he starts off by thanking the Swedish government for honoring him with the highest civilian award there. Mm. And then he talks about the business, the trade opportunities after the India-EU FTA. And it has the stamp of the EU president as well, because she was also in the audience there. They all addressed a group of around 60 CEOs of European companies. After that, Prime Minister also spoke about that how the relationship between the two countries have been elevated to a strategic partnership, and where both the countries will move forward on key pillars such as green transition, defense, emerging technologies, and people-to-people ties. And Prime Minister also spoke about the climate challenge, saying that the cooperation between India and Sweden in the Arctic region is also making an important contribution to global climate understanding. He spoke about industries, innovation, investors, that for all these stakeholders, the India-EU FTA will open multiple doors, opportunities in the Indian territory. And at the end, he spoke about the issue of terrorism. We know that Sweden was also heavily impacted due to the emergence of ISIS back a decade earlier, back in 2014 and 15 and 16. In those years, Sweden was also impacted by ISIS. So Prime Minister, expressing his gratitude to the Swedish government for extending its support during the Pahalgam attack, Prime Minister reminded them of that, recalled it, expressed its gratitude, and also said that both countries condemn terrorism. So recalling the issue of Pahalgam, besides talking about trade ties and also how India-EU FTA is going to benefit the entire European Union, the entire region of Europe, as well as India.
7: Ghazali, please continue to stay with us on the broadcast. And that's an important point that Ghazali highlights of what the Prime Minister spoke about Sweden's support during the Pahalgam attack. Let's listen in to what the Prime Minister said.
8: आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
7: Ghazali, a broader perspective from you. This is a five-nation tour. You tracked all the developments that happened in Netherlands as well. The broader messaging that the Prime Minister is taking to the Western world, and what are the likely key takeaways that we must look forward to?
9: See, one thing that the Prime Minister's visit has served is that he is not differentiating between the two regions of West Asia and Europe. Mm-hmm. His first leg of the visit to UAE, identifying UAE as one of the key partners amid all the crisis developing there in West Asia, and then moving to Europe. So there is no bifurcation or sort of a division that he is giving more importance to one region over the other. The second point of this entire relevance of this entire visit is that he is not just identifying or visiting those countries with which we have excellent relations, but he is also visiting many other countries of the European Union to forge new ties. So with Sweden, or let's say with Netherlands, we know that it is one of the largest investors, or biggest investors in the entire European Union as a member country. But even during the visit in Netherlands, Prime Minister was looking for new sectors through which we can have deeper collaboration. We often hear in the MOUs, in the statements, in the joint press communique, that perhaps the traditional sector of trade and energy would be the focus of the talks. But in certain countries, Prime Minister had also spoken about people-to-people and cultural exchanges. And the relevant example of that was how the Netherlands authorities had decided to hand over the Chola dynasty or copper plates of from the Chola dynasty period. So this certainly shows that we have good relations. Prime Minister's visit is only building upon that. And here, the last statement when it comes to terrorism, that is also a diplomatic statement, because after Operation Sindoor, and as we are marking 1 year to that entire operation, that how India wants to isolate Pakistan at global level, yep, by creating awareness of Pakistan's involvement in Pahalgam. That is why there have been multiple terror incidents with which India has faced in the last few years. But Pahalgam being one where India wants to sort of raise accountability, to establish accountability by isolating and naming Pakistan. That is why Prime Minister spoke about the Pahalgam incident, also expressed its gratitude to not just Sweden, but it was a broader message to the entire European Union, since the Commission President was also there on the stage.
7: Thank you, Ghazali, for putting that into perspective. And as you rightly pointed out, that was a broader message to the European partners who were present there. A desperate late-night phone call, a daughter in distress, and then silence. This is the story of Twisha, a 33-year-old who told her mother about the harassment she was facing at a matrimonial home, before abruptly disconnecting the call when her husband entered the room. Within minutes, her family's panic turned into horror. Repeated calls went unanswered, and soon came the chilling message. Twisha was not breathing. Now, a post-mortem report citing multiple anti-mortem injuries has deepened the mystery around her death, as grieving family members demand justice and unbiased investigation. The post-mortem report stated that Twisha died due to anti-mortem hanging by ligature, indicating she was alive at the time of hanging. It also recorded multiple anti-mortem injuries on different parts of her body. Twisha's mother-in-law, Giri Bala Singh, a retired judge, is under scrutiny after the family's alleged harassment, delayed response, and fears of influence with the investigation. Twisha's brother, Major Harshit Sharma, who's serving army, said that Twisha was forced to terminate her pregnancy and questions were raised on her character. As we speak, the husband and the mother-in-law of Twisha are out on anticipatory bail. Twisha's father has called the bail unfair, saying that the legal background of the family is protecting the in-laws.
10: Singh criminal lawyer hai, to is wajah se usko sare bachav ka sab tarika pata hoga sari. Kis tarah se bacha jata hai. तो उसने क्राइम किया है शुरू में तो कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी शुरू में नहीं एक दो महीने बाद वो टॉर्चर करने लग गया था शादी को पाँच महीने हुए मेरी बेटी को अभी वो उसकी जो कपड़े भी उसने नहीं खोले उसे जब तक तैयार कुछ एंजॉय नहीं कर पाई कहीं गई नहीं वो पाँच महीने में ही उसने पागल हो गई 30 साल से मेरे साथ में जब पागल ही थी वो पढ़ी लिखी नहीं है तू जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए हैं वो लंदन जाने वाली थी अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी में काम करेगी बाहर जाएगी उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी तू गंवार है तू तेरे को बोलना नहीं आता हम तो दोनों को सजा चाहते हैं मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं
7: Earlier in the day, Twisha's father and cousin spoke to NDTV describing their ordeal. Listen. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको प्रभावित कर रहा है आशीष जी
11: Yes, madam, absolutely. The moment we realized that our daughter has passed, the moment we got the call that she is no more, the three words that were spoken to us, we immediately started from Delhi, from Ajmer, the family came here. And after coming here, all we are seeing, all we have witnessed is horror when we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying. The continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered. That too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested. The proceedings conducted under undue pressure. In the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the codes getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time from 9:30 to 5 till in the evening, the codes are getting changed. There must be some certain reason behind it.
7: Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी। त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
12: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं।
7: जी,
12: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कहीं पर, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की देखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएँ। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
7: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurated the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
13: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore Rural Vision Care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
14: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियाँ लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
13: अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना, द प्रोजेक्ट इज डिजाइन्ड टू डिलीवर अफोर्डेबल आई केयर टू अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग रूरल हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग नेटवर्क। The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
14: अदानी ग्रुप का एक मंत्र भी रहा है बिजनेस के साथ साथ में कि सेवा ही साधना है, और सेवा ही साधने के मंत्र के साथ साथ हम हमारा हर प्रयास इस तरह से रहेगा कि खाली बिजनेस के लिए हम यहाँ नहीं आए, उसके साथ साथ में हम सेवा करते हैं तो वो हमारे को अंदर की खुशी और मिले।
13: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.

0: A third child, fourth child, and large number of children and a bigger family, they are actually working against the interests of our country. They are working against the interests of family life in our country.
1: Andhra Pradesh today has a TFR fertility ratio of only 1.7%, whereas the replacement level is 2.1%. That is the reason why today our Honorable Leader, Mr. Naidu, is appealing to people to have more children. We have to manage our population well, then only we'll have the required young workforce for the future. And that is the reason why the government has announced, the Honorable CM had announced, that every family which has a third child will be given a financial assistance of 30,000, and a family having a fourth child will be given a financial assistance of 40,000.
2: That is wrong first. But what will he do? When we strictly followed this Government of India's family planning plan scheme, the northern states did not follow that. But southern states strictly followed it, and our population is under control. But northern states have not followed, and their population is more. But this BJP government wants to make use of this wrongful doing of the northern states.
3: देखिए, आबादी को लेकर पहले भी ये चिंता रही है कि बहुत सी जगह आबादी बढ़ रही है, बहुत सी जगह घट रही है। तो जहाँ घट रही है वहाँ उसमें आंध्र प्रदेश भी है। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने तौर पे स्कीम बनाई है और सरसंघचालक जी ने भी कहा था कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तो देश में सबको तम 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए।
4: देखिए, इस तरह के ऐलान हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी होते हैं और राजनेता भी अलग अलग फॉर्म में करते रहते हैं। ये बयान भी एक उसी क्रम में आया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वजह क्या है कि हिंदू जो है गर्भ में बच्चों को मार रहा है। अगर उसे पता चल जाए कि लड़की है पेट में, तो गर्भपात करा दिया जाता है। जब हिंदू खुद अपने बच्चे को पेट में मारेगा, तो जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद उससे कैसे की जा सकती है?
5: Well, with that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And this is the Prime Minister Modi's joint briefing with the EU chief and the Swedish Prime Minister. Prime Minister has thanked Sweden for Royal Order of Polar Star. Prime Minister says that the India-Sweden tie is built on democratic values. Both nations see innovation as driver of growth, elevating ties to strategic partnership with Sweden. FTA is a new opportunity for investors and innovators. We thank Sweden for support during Pahalgam. The Prime Minister also says that Sweden too has zero tolerance for terror.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
0: माय कॉलीग गजाली जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। गजाली, द की टेकअवेज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस।
2: See, first of all, he starts off by thanking the Swedish government for honoring him with the highest civilian award there. Mm. And then he talks about the business, the trade opportunities after the India-EU FTA. And it has the stamp of the EU president as well, because she was also in the audience there. They all addressed a group of around 60 CEOs of European companies. After that, Prime Minister also spoke about that how the relationship between the two countries have been elevated to a strategic partnership, and where will both the countries will move forward on key pillars such as green transition, defense, emerging technologies and people-to-people ties. And Prime Minister also spoke about the climate challenge, saying that the cooperation between India and Sweden in the Arctic region is also making an important contribution to global climate understanding. He spoke about industries, innovation, investors, that for all these stakeholders, the India-EU FTA will open multiple doors, opportunities in the Indian territory. And at the end, he spoke about the issue of terrorism. We know that Sweden was also heavily impacted due to the emergence of ISIS back a decade earlier, back in 2014 and 15 and 16. In those years, Sweden was also impacted by ISIS. So Prime Minister expressing his gratitude to the Swedish government for extending its support during the Pahalgam attack. Prime Minister reminded them of that, recalled it, expressed its gratitude, and also said that both countries condemn terrorism. So, recalling the issue of Pahalgam, besides talking about trade ties and also how India-EU FTA is going to benefit the entire European Union, the entire region of Europe, as well as India.
0: Ghazali, please continue to stay with us on the broadcast. And that's an important point that Ghazali highlights of what the Prime Minister spoke about Sweden's support during the Pahalgam attack. Let's listen in to what the Prime Minister said.
1: आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: Ghazali, a broader perspective from you. This is a five-nation tour. You tracked all the developments that happened in Netherlands as well. The broader messaging that the Prime Minister is taking to the Western world, and what are the likely key takeaways that we must look forward to?
2: See, one thing that the Prime Minister's visit has served is that he is not differentiating between the two region of West Asia and Europe. Okay. His first leg of the visit to UAE, identifying UAE as one of the key partners amid all the crisis developing there in West Asia, and then moving to Europe. So there is no bifurcation or sort of a division that he is giving more importance to one region over the other. The second point of this entire relevance of this entire visit is that he is not just identifying or visiting those countries with which we have excellent relations, but he is also visiting many other countries of the European Union to forge new ties. So with Sweden, or let's say with Netherlands, we know that it is one of the largest investors, or biggest investors in the entire European Union as a member country. But even during the visit in Netherlands, Prime Minister was looking for new sectors through which we can have deeper collaboration. We often hear in the MOUs, in the statements, in the joint press communique, that perhaps the traditional sectors of trade and energy would be the focus of the talks. But in certain countries, Prime Minister had also spoken about people-to-people and cultural exchanges. And the relevant example of that was how the Netherlands authorities had decided to hand over the Chola dynasty or copper plates of from the Chola dynasty period. So this certainly shows that we have good relations. Prime Minister's visit is only building upon that. And here, the last statement when it comes to terrorism, that is also a diplomatic statement, because after Operation Sindoor, and as we are marking 1 year to that entire operation, that how India wants to isolate Pakistan at global level, yeah, by creating awareness of Pakistan's involvement in Pahalgam. That is why there have been multiple terror incidents with which India has faced in the last few years, but Pahalgam being one where India wants to sort of raise accountability, to establish accountability by isolating and naming Pakistan. That is why Prime Minister spoke about the Pahalgam incident, also expressed its gratitude to not just Sweden, but it was a broader message to the entire European Union, since the Commission President was also there on the stage.
0: Thank you, Ghazali, for putting that into perspective. And as you rightly pointed out, that was a broader message to the European partners who were present there. A desperate late-night phone call, a daughter in distress, and then silence. This is the story of Twisha, a 33-year-old who told her mother about the harassment she was facing at a matrimonial home, before abruptly disconnecting the call when her husband entered the room. Within minutes, her family's panic turned into horror. Repeated calls went unanswered, and soon came the chilling message. Twisha was not breathing. Now, a post-mortem report citing multiple anti-mortem injuries has deepened the mystery around her death, as grieving family members demand justice and unbiased investigation. The post-mortem report stated that Twisha died due to anti-mortem hanging by ligature, indicating she was alive at the time of hanging. It also recorded multiple anti-mortem injuries on different parts of her body. Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, a retired judge, is under scrutiny after the family's alleged harassment, delayed response, and fears of influence with the investigation. Twisha's brother, Major Harshit Sharma, who's serving army, said that Twisha was forced to terminate her pregnancy and questions were raised on her character. As we speak, the husband and the mother-in-law of Twisha are out on anticipatory bail. Twisha's father has called the bail unfair, saying that the legal background of the family is protecting the in-laws.
3: Singh criminal lawyer hai, to is wajah se usko sare bachav ka sab tarika pata hoga sare. Kis tarah se bacha jata hai. तो उसने क्राइम किया है. शुरू में तो कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी. शुरू में नहीं, एक दो महीने बाद वो टॉर्चर करने लग गया था. शादी को 5 महीने हुए हैं. 5 महीने हुए मेरी बेटी को. अभी वो उसके जो कपड़े भी उसने नहीं खोले. उसे जब तक तैयार कुछ एंजॉय नहीं कर पाई, कहीं गई नहीं. वो 5 महीने में ही उसने पागल हो गई. 30 साल से मेरे साथ. मेरी जब पागल ही थी वो. पढ़ी लिखी नहीं है तू, जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए हैं, वो लंदन जाने वाली थी, अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी में काम करेगी, बाहर जाएगी, उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी, तू गंवार है, तू तेरे को बोलना नहीं आता। हम तो दोनों को सजा चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय मिले, और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं।
0: Earlier in the day, Twisha's father and cousin spoke to NDTV describing their ordeal. Listen. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
4: यस मैडम, एब्सोल्युटली। द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट द कॉल दैट शी इज नो मोर, द थ्री वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर, द फैमिली केम हियर, एंड आफ्टर कमिंग हियर all we are seeing, all we have witnessed is horror. When we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the national, the women commission, the mahila thana, the human rights commission, the office of the commissioner of the police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered, that too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
0: Navnidhi ji, मैं आपके पास आना चाहूँगी। परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियाँ थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
5: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं
0: जी।
5: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा, अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे, गलत डिसीज़न हो जाता है कई बार, इसको आप जो है, हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे, जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ, इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो MP के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए, अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
0: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurated the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
6: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
7: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटिया लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशंस इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
6: About 70 kilometers from Patna, the project is designed to deliver affordable eye care to undeserved communities while also creating a strong rural healthcare and training network. The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
7: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai business ke sath sath mein ki seva hi sadhna hai, aur seva hi sadhne ke mantra ke sath sath hum hamara har prayas is tarah se rahega ki khali business ke liye hum yahan nahi aaye, uske sath sath mein hum seva karte hain to wo hamare ko andar ki khushi aur milti hai.
6: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.
0: We're stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.

0: And this is the Prime Minister Modi's joint briefing with the EU chief and the Swedish Prime Minister. Prime Minister has thanked Sweden for Royal Order of Polar Star. Prime Minister says that the India-Sweden tie is built on democratic values. Both nations see innovation as driver of growth, elevating ties to strategic partnership with Sweden. FTA is a new opportunity for investors and innovators. We thank Sweden for support during Pahalgam. The Prime Minister also says that Sweden too has zero tolerance for terror.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
0: My colleague Ghazali joining us on the broadcast. Ghazali, the key takeaways from the Prime Minister's address.
2: See, first of all, he starts off by thanking the Swedish government for honoring him with the highest civilian award there. Mm. And then he talks about the business, the trade opportunities after the India-EU FTA. And it has the stamp of the EU president as well, because she was also in the audience there. They all addressed a group of around 60 CEOs of European companies. After that, Prime Minister also spoke about that how the relationship between the two countries have been elevated to a strategic partnership, and where will both the countries will move forward on key pillars such as green transition, defense, emerging technologies and people-to-people ties. And Prime Minister also spoke about the climate challenge, saying that the cooperation between India and Sweden in the Arctic region is also making an important contribution to global climate understanding. He spoke about industries, innovation, investors, that for all these stakeholders, the India-EU FTA will open multiple doors, opportunities in the Indian territory. And at the end, he spoke about the issue of terrorism. We know that Sweden was also heavily impacted due to the emergence of ISIS back a decade earlier, back in 2014 and 15 and 16. In those years, Sweden was also impacted by ISIS. So Prime Minister expressing his gratitude to the Swedish government for extending its support during the Pahalgam attack. Prime Minister reminded them of that, recalled it, expressed its gratitude, and also said that both countries condemn terrorism. So recalling the issue of Pahalgam, besides talking about trade ties and also how India-EU FTA is going to benefit the entire European Union, the entire region of Europe, as well as India.
0: Ghazali, please continue to stay with us on the broadcast. And that's an important point that Ghazali highlights of what the Prime Minister spoke about Sweden's support during the Pahalgam attack. Let's listen in to what the Prime Minister said.
1: आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: Ghazali, a broader perspective from you. This is a five-nation tour. You tracked all the developments that happened in Netherlands as well. The broader messaging that the Prime Minister is taking to the Western world, and what are the likely key takeaways that we must look forward to?
2: See, one thing that the Prime Minister's visit has served is that he is not differentiating between the two region of West Asia and Europe. Mm-hmm. His first leg of the visit to UAE, identifying UAE as one of the key partners amid all the crisis developing there in West Asia, and then moving to Europe. So there is no bifurcation or sort of a division that he is giving more importance to one region over the other. The second point of this entire relevance of this entire visit is that he is not just identifying or visiting those countries with which we have excellent relations, but he is also visiting many other countries of the European Union to forge new ties. So with Sweden, or let's say with Netherlands, we know that it is one of the largest investors, or biggest investors in the entire European Union as a member country. But even during the visit in Netherlands, Prime Minister was looking for new sectors through which we can have deeper collaboration. We often hear in the MOUs, in the statements, in the joint press communique, that perhaps the traditional sectors of trade and energy would be the focus of the talks. But in certain countries, Prime Minister had also spoken about people-to-people and cultural exchanges. And the relevant example of that was how the Netherlands authorities had decided to hand over the Chola dynasty or copper plates of from the Chola dynasty period. So this certainly shows that we have good relations. Prime Minister's visit is only building upon that. And here, the last statement when it comes to terrorism, that is also a diplomatic statement, because after Operation Sindoor, and as we are marking 1 year to that entire operation, that how India wants to isolate Pakistan at global level, yeah, by creating awareness of Pakistan's involvement in Pahalgam. That is why there have been multiple terror incidents with which India has faced in the last few years. But Pahalgam being one where India wants to sort of raise accountability, to establish accountability by isolating and naming Pakistan. That is why Prime Minister spoke about the Pahalgam incident, also expressed his gratitude to not just Sweden, but it was a broader message to the entire European Union, since the Commission President was also there on the stage.
0: Thank you, Ghazali, for putting that into perspective. And as you rightly pointed out, that was a broader message to the European partners who were present there. A desperate late-night phone call, a daughter in distress, and then silence. This is the story of Twisha, a 33-year-old who told her mother about the harassment she was facing at a matrimonial home, before abruptly disconnecting the call when her husband entered the room. Within minutes, her family's panic turned into horror. Repeated calls went unanswered, and soon came the chilling message. Twisha was not breathing. Now, a post-mortem report citing multiple anti-mortem injuries has deepened the mystery around her death, as grieving family members demand justice and unbiased investigation. The post-mortem report stated that Twisha died due to anti-mortem hanging by ligature, indicating she was alive at the time of hanging. It also recorded multiple anti-mortem injuries on different parts of her body. Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, a retired judge, is under scrutiny after the family's alleged harassment, delayed response, and fears of influence with the investigation. Twisha's brother, Major Harshit Sharma, who's serving army, said that Twisha was forced to terminate her pregnancy and questions were raised on her character. As we speak, the husband and the mother-in-law of Twisha are out on anticipatory bail. Twisha's father has called the bail unfair, saying that the legal background of the family is protecting the in-laws.
3: Singh criminal lawyer hai, to is wajah se usko sare bachav ka sab tarika pata hoga sari. Kis tarah se bacha jata hai. तो उसने क्राइम किया है. शुरू में तो कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी. शुरू में नहीं, एक दो महीने बाद वो टॉर्चर करने लग गया था. शादी को 5 महीने हुए हैं. 5 महीने हुए मेरी बेटी को अभी. वो उसके जो कपड़े भी उसने नहीं खोले, उसे जब तक तैयार कुछ एंजॉय नहीं कर पाई, कहीं गई नहीं. वो 5 महीने में ही उसने पागल हो गई. 30 साल से मेरे साथ, मेरी जब पागल ही थी वो. पढ़ी लिखी नहीं है तू, जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए हैं, वो लंदन जाने वाली थी, अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी में काम करेगी, बाहर जाएगी, उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी, तू गंवार है, तू तेरे को बोलना नहीं आता। हम तो दोनों को सजा चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं।
0: Earlier in the day, Trisha's father and cousin spoke to NDTV describing their ordeal. Listen. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
4: यस मैडम, एब्सोल्युटली। द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट द कॉल दैट शी इज नो मोर, द थ्री वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर, द फैमिली केम हियर, एंड आफ्टर कमिंग हियर all we are seeing, all we have witnessed is horror. When we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the national, the women commission, the mahila thana, the human rights commission, the office of the commissioner of the police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered, that too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
0: Navnidhi ji, मैं आपके पास आना चाहूँगी। परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियाँ थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
5: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं
0: जी।
5: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा, अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे, गलत डिसीज़न हो जाता है कई बार, इसको आप जो है, हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे, जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचक्कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो MP के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
0: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurated the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
6: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
7: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटिया लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशंस इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
6: About 70 kilometers from Patna, the project is designed to deliver affordable eye care to undeserved communities while also creating a strong rural healthcare and training network. The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
7: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai business ke sath sath mein ki seva hi sadhna hai, aur seva hi sadhne ke mantra ke sath sath hum hamara har prayas is tarah se rahega ki khali business ke liye hum yahan nahi aaye, uske sath sath mein hum seva karte hain to wo hamare ko andar ki khushi aur milti hai.
6: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.
0: We are stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.
8: Excellence measured by those who built it. Presenting the jury of the NDTV Profit Business Leadership Awards. Sunil Bharti Mittal, chairman of the jury. Founder and Chairman, Bharti Enterprises. Noel Naval Tata, Chairman, Tata Trusts. UK Sinha, former Chairman, SEBI. Kiran Mazumdar Shaw, Chairperson, Biocon Group. C.S. Setty, Chairperson, SBI. Jayant Sinha, former Union Minister of Finance and Civil Aviation. Ramesh Damani, Value Investor and Member of BSE. Cyril Shroff, Managing Partner, Cyril Amarchand Mangaldas. NDTV Profit Business Leadership Awards. Honoring Excellence. Coming soon. India's Unshakable.
0: Actor Rajnikanth has made a striking political remark, saying he would have won the 2021 elections had he contested. He clarified he holds no jealousy towards Tamil Nadu Chief Minister Vijay, but noted that expectations from Vijay remain significant among the people of Tamil Nadu. Rajnikanth further underlined that his personal friendship with Chief Minister M.K. Stalin goes beyond political lines. His remarks come at a time of shifting political narratives in the state, where new alignments and rising figures continue to reshape the political landscape.
9: 100% Vetti Vetti Pe. That's a doubt. 100% Vetti Vetti Pe. That's a doubt.
10: That's a doubt. That's a doubt. Vijay Mele is a doubt. I don't have a அரசியல்னா இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல்னா இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போகிறாங்க? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் என்ன போகிறாங்க வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. அப்போ கூட வந்திருக்காது, கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது. ஸோ இன்னொன்று வந்து எனக்கும் விஜய்க்கு வந்து ஒரு எனக்கும் விஜய்க்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன், நான் வந்து விஜயை வந்து நான் சும்மா இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு என்ன சொல்லுங்கள் கிட்ட பேர் விஜய் என்ன பேர் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு என்ன சொல்லுங்கள். சின்ன வயசுல தான் அவர் பார்த்துட்டுருக்காரு, அவர் சிஎம்மானதில் எனக்கு என்ன போகிறான். ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்தல் முடிவுகள் வந்த உடனே நான் வந்து ஸ்டாலின் சாரை போய் பார்த்தது, அது கொஞ்சம் விமர்சனங்கள் வந்தது. ஸ்டாலின் சார் அவர்களை என்னுடைய 38-40 ஆண்டு நண்பர், எங்களுடைய நட்பு கொள்கைகள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது, ஜனநாயகத்தில் வந்து தோல்வி வெற்றி சடலை இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குலத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில் நட்பு முறையில் அவர் போய் நான் பார்த்தேன்.
11: He has expressed the fact, the factual situation. He had come and met our press party president because of his personal friendship with him, and he had greeted Vijay. It is, the media had carried that news also. That's all. He has explained the position, that's all. But somehow some people are always doing some twisting work for which his answer will take care. No, these are all somebody who, what did Rajnikanth told that I am for DMK-ADMK merger? No. Somebody will talk something.
12: 15 நாள்லையும் அப்படி தான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாதம் டைம் கொடுக்க வேண்டாமா? புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர், அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது அரசியலுக்கு. சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான். அதனால புதியவர்களை வந்து நம்ம கம்மியாகவும் இடப்பட வேண்டாம், ரொம்பவும் எதிர்பார்க்க கூடாது. என்ன நடக்குமோங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நீங்க தானே ஓட்டு போட்டீங்க, நீங்க தான் அது நல்லபடியா நடக்குதாங்கிறத நீங்க தான் கவனிக்கணும், நாங்களும் கண்காணிக்கிறோம். சிரிப்போட தான் சொன்னாரே தவிர நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பொறாமப்பட்டது கிடையாது, போட்டி போடுவோம் பட் பொறாமப்பட்டது கிடையாது. We are the best sportsman you can find in Tamil Nadu. அது நாங்க சினிமா துறையில இருக்கோம், நாங்க கிரிக்கெட் விளையாடி இருந்தாலும் இப்படித்தான் இருந்திருக்கோம்.
0: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more children, saying that the state must act to reverse its declining population growth trend. Addressing a public meet, Naidu said that the state government would provide Rs 30,000 for the birth of the third child and 40,000 for the fourth one. The TDP said that this policy is being brought in to boost the falling fertility ratios in the state. The Congress has hit out at Andhra Pradesh government's move and has criticized the decision, questioning the practicality of such a policy. The government population move is being seen to encourage higher birth rates amid a sharply falling total fertility rate and declining rural family size.

0: तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूं, इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त हैं, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह। और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएं। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया।
1: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurated the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
2: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
3: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियाँ लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशंस इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
2: अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना, द प्रोजेक्ट इज डिजाइन्ड टू डिलीवर अफोर्डेबल आई केयर टू अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग रूरल हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग नेटवर्क। The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
3: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai, the business ke saath saath mein, ki seva hi sadhana hai. Aur seva hi sadhne ke mantra ke saath saath, hum hamara har prayas is tarah se rahega ki khali business ke liye hum yahan nahi aaye hain, uske saath saath mein hum seva karte hain, to wo hamare ko andar ki khushi aur milti hai.
2: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.
1: We are stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.

0: 1.7%, whereas the replacement level is 2.1%. That is the reason why today our Honorable Leader, Mr. Naidu, is appealing to people to have more children. We have to manage our population well. Then only we'll have the required young workforce for the future. And that is the reason why we have, the government has announced, the Honorable CM had announced, that every family which has a third child will be given a financial assistance of 30,000, and a family having a fourth child will be given a financial assistance of 40,000.
1: That is wrong first. But what will he do? When we followed, strictly followed this Government of India's family planning plan scheme, the northern states did not follow that. But southern states strictly followed it, and our population is under control. But northern states have not followed, and their population is more. But this BJP government wants to make use of this wrongful doing of the northern states.
2: देखिए आबादी को लेकर पहले भी ये चिंता रही है कि बहुत सी जगह आबादी बढ़ रही है, बहुत सी जगह घट रही है. तो जहाँ घट रही है वहाँ उसमें आंध्र प्रदेश भी है. तो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने तौर पे स्कीम बनाई है, और सरसंचालक जी ने भी कहा था कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए. तो देश में सबको 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए.
3: देखिए ये इस तरह के ऐलान हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी होते हैं, और राजनेता भी अलग अलग फॉर्म में करते रहते हैं. ये बयान भी एक उसी क्रम में आया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता. वजह क्या है कि हिंदू जो है गर्भ में बच्चों को मार रहा है. अगर उसे पता चल जाए कि लड़की है पेट में, तो गर्भपात करा दिया जाता है. जब हिंदू खुद अपने बच्चे को पेट में मारेगा, तो जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद उससे कैसे की जा सकती है.
4: Well, with that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ. भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड.
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है. जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है.
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री.
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: And this is the Prime Minister Modi's joint briefing with the EU chief and the Swedish Prime Minister. Prime Minister has thanked Sweden for Royal Order of Polar Star. Prime Minister says that the India-Sweden tie is built on democratic values. Both nations see innovation as driver of growth, elevating ties to strategic partnership with Sweden. FTA is a new opportunity for investors and innovators. We thank Sweden for support during Pahalgam. The Prime Minister also says that Sweden too has zero tolerance for terror.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
0: माय कॉलीग गजाली जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। गजाली, द की टेकअवेज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस।
2: See, first of all, he starts off by thanking the Swedish government for honoring him with the highest civilian award there. Mm. And then he talks about the business, the trade opportunities after the India-EU FTA. And it has the stamp of the EU president as well, because she was also in the audience there. They all addressed a group of around 60 CEOs of European companies. After that, Prime Minister also spoke about that how the relationship between the two countries have been elevated to a strategic partnership, and where both the countries will move forward on key pillars such as green transition, defense, emerging technologies and people-to-people ties. And Prime Minister also spoke about the climate challenge, saying that the cooperation between India and Sweden in the Arctic region is also making an important contribution to global climate understanding. He spoke about industries, innovation, investors, that for all these stakeholders, the India-EU FTA will open multiple doors, opportunities in the Indian territory. And at the end, he spoke about the issue of terrorism. We know that Sweden was also heavily impacted due to the emergence of ISIS back a decade earlier, back in 2014 and 15 and 16. In those years, Sweden was also impacted by ISIS. So Prime Minister, expressing his gratitude to the Swedish government for extending its support during the Pahalgam attack, Prime Minister reminded them of that, recalled it, expressed its gratitude, and also said that both countries condemn terrorism. So recalling the issue of Pahalgam, besides talking about trade ties, and also how India-EU FTA is going to benefit the entire European Union, the entire region of Europe, as well as India.
0: Ghazali, please continue to stay with us on the broadcast. And that's an important point that Ghazali highlights of what the Prime Minister spoke about Sweden's support during the Pahalgam attack. Let's listen in to what the Prime Minister said.
1: आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: Ghazali, a broader perspective from you. This is a five-nation tour. You tracked all the developments that happened in Netherlands as well. The broader messaging that the Prime Minister is taking to the Western world, and what are the likely key takeaways that we must look forward to?
2: See, one thing that the Prime Minister's visit has served is that he is not differentiating between the two regions of West Asia and Europe. Okay. His first leg of the visit to UAE, identifying UAE as one of the key partners amid all the crisis developing there in West Asia, and then moving to Europe. So there is no bifurcation or sort of a division that he is giving more importance to one region over the other. The second point of this entire, relevance of this entire visit is that he is not just identifying or visiting those countries with which we have excellent relations, but he is also visiting many other countries of the European Union to forge new ties. So with Sweden, or let's say with Netherlands, we know that it is one of the largest investors, or biggest investors in the entire European Union as a member country. But even during the visit in Netherlands, Prime Minister was looking for new sectors through which we can have deeper collaboration. We often hear in the MOUs, in the statements, in the joint press communique, that perhaps the traditional sectors of trade and energy would be the focus of the talks. But in certain countries, Prime Minister had also spoken about people-to-people and cultural exchanges. And the relevant example of that was how the Netherlands authorities had decided to hand over the Chola dynasty or copper plates of from the Chola dynasty period. So this certainly shows that we have good relations. Prime Minister's visit is only building upon that. And here, the last statement when it comes to terrorism, that is also a diplomatic statement, because after Operation Sindoor, and as we are marking 1 year to that entire operation, that how India wants to isolate Pakistan at global level, yep, by creating awareness of Pakistan's involvement in Pahalgam. That is why there have been multiple terror incidents with which India has faced in the last few years. But Pahalgam being one where India wants to sort of raise accountability, to establish accountability by isolating and naming Pakistan. That is why Prime Minister spoke about the Pahalgam incident, also expressed his gratitude to not just Sweden, but it was a broader message to the entire European Union, since the Commission President was also there on the stage.
0: Thank you, Ghazali, for putting that into perspective. And as you rightly pointed out, that was a broader message to the European partners who were present there. A desperate late-night phone call, a daughter in distress, and then silence. This is the story of Twisha, a 33-year-old who told her mother about the harassment she was facing at a matrimonial home, before abruptly disconnecting the call when her husband entered the room. Within minutes, her family's panic turned into horror. Repeated calls went unanswered, and soon came the chilling message. Twisha was not breathing. Now, a post-mortem report citing multiple anti-mortem injuries has deepened the mystery around her death, as grieving family members demand justice and unbiased investigation. The post-mortem report stated that Twisha died due to anti-mortem hanging by ligature, indicating she was alive at the time of hanging. It also recorded multiple anti-mortem injuries on different parts of her body. Twisha's mother-in-law, Giri Bala Singh, a retired judge, is under scrutiny after the family's alleged harassment, delayed response, and fears of influence with the investigation. Twisha's brother, Major Harshit Sharma, who's serving army, said that Twisha was forced to terminate her pregnancy and questions were raised on her character. As we speak, the husband and the mother-in-law of Twisha are out on anticipatory bail. Twisha's father has called the bail unfair, saying that the legal background of the family is protecting the in-laws.
3: Singh criminal lawyer hai, to is wajah se usko sare bachav ka sab tarika pata hoga sari. Kis tarah se bacha jata hai? तो उसने क्राइम किया है. शुरू में तो कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी. शुरू में नहीं, एक दो महीने बाद वो टॉर्चर करने लग गया था. शादी को 5 महीने हुए हैं. 5 महीने हुए मेरी बेटी को. अभी वो उसके जो कपड़े भी उसने नहीं खोले. उसे जब तक तैयार कुछ एंजॉय नहीं कर पाई, कहीं गई नहीं. वो 5 महीने में ही उसने पागल हो गई. 30 साल से मेरे साथ. मेरे जब पागल ही थी वो. पढ़ी लिखी नहीं है तू, जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए हैं, वो लंदन जाने वाली थी, अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी एक काम करेगी, बाहर जाएगी, उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी, तू गंवार है, तू तेरे को बोलना नहीं आता। हम तो दोनों को सजा चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं।
0: Earlier in the day, Trisha's father and cousins spoke to NDTV describing their ordeal. Listen in.
4: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
5: यस मैडम, एब्सोल्युटली। द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट द कॉल दैट शी इज नो मोर, द थ्री वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर, द फैमिली केम हियर, एंड आफ्टर कमिंग हियर All we are seeing, all we have witnessed is horror. When we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the national, the women commission, the mahila thana, the human rights commission, the office of the commissioner of the police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered, that too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening? The courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
4: Navnidhi ji, मैं आपके पास आना चाहूंगी। परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
6: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं
4: जी।
6: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा, अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे, गलत डिसीज़न हो जाता है कहीं पर, इसको आप जो है, हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे, जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको ले के जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचक्कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो MP के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए, अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये गॉड PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
0: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurate the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
7: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore Rural Vision Care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
8: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटिया लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
7: About 70 kilometers from Patna, the project is designed to deliver affordable eye care to undeserved communities while also creating a strong rural healthcare and training network. The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
8: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai business ke saath saath mein ki seva hi sadhna hai, aur seva hi sadhne ke mantra ke saath saath हम हमारा हर प्रयास इस तरह से रहेगा कि खाली बिजनेस के लिए हम यहाँ नहीं आए, उसके साथ साथ में हम सेवा करते हैं तो वो हमारे को अंदर की खुशी और मिले।
7: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau report, NDTV.
0: We are slipping into a very short break. News and updates continue on the other side.
9: One days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
10: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
9: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Dicoid sahab, aise mat kijiye. Suddenly, people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to do.
11: And for a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
9: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
10: The line of control, Shivaru, NDTV.
9: The results with the BJP winning more than 200 seats
12: clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Truvendu Adhikari leading at this moment.
0: Actor Rajnikanth has made a striking political remark, saying he would have won the 2021 elections had he contested. He clarified he holds no jealousy towards Tamil Nadu Chief Minister Vijay, but noted that expectations from Vijay remain significant among the people of Tamil Nadu. Rajnikanth further underlined that his personal friendship with Chief Minister M.K. Stalin goes beyond political lines. His remarks come at a time of shifting political narratives in the state, where new alignments and rising figures continue to reshape the political landscape.
13: 100% vetu vetipu adra doubt kada 100% vetu vetipu adra doubt kada
14: abdi ensu adu koru vimarsha innonu vande vijay mele enak porama na adu seal vande illa அரசியல் தான் இல்லைன்னு சொல்லி விலகி ஆச்சு. அரசியல் தான் இல்லாத போது அவர் மேலே எனக்கு ஏன் போகிறாங்க? ஒருவேளை கமல்ஹாசன் ஏதாவது முதலமைச்சர் தான் எனக்கு போராட்டம் வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது. அப்போ கூட வந்திருக்காது, கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்காது, கிடைக்காம இருக்கிறது கிடைக்காது. ஸோ இன்னொன்று வந்து எனக்கும் விஜய்க்கு வந்து ஒரு எனக்கும் விஜய்க்கு வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் கேப், கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து விஜய் வந்து நான் சம இதை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டால் அது எனக்கு என்ன இல்லை கெட்ட பேர். விஜய் என்ன பேர் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு என்ன பேர், சின்ன வயசுல தான் அவர் பார்த்துட்டு அவர் சிஎம் ஆனதுல எனக்கு என்ன போகிறான். ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்தல் முடிவுகள் வந்த உடனே நான் வந்து ஸ்டாலின் சாரை போய் பார்த்தது, அது கொஞ்சம் விமர்சனங்கள் வந்தது. ஸ்டாலின் சார் அவர்களை என்னுடைய 38-40 ஆண்டு நண்பர், எங்களுடைய நட்பு கொள்கைகள் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஜனநாயகத்தில் வந்து தோல்வி வெற்றி சடகம் இருந்தாலும் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த குளத்தூரில் வந்து தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில் நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன்.
15: He has expressed the fact, the factual situation. He had come and met our press party president because of his personal friendship with him, and he had greeted Vijay. It is the media had carried that news also. That's all. He has explained the position. That's all. But somehow some people are always doing some twisting work, for which his answer will take care. No, these are all somebody who, what did Rajnikanth told that I am for DMK ADMK merger? No. Somebody will talk something.
16: 15 நாள்லயே அப்படி தான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாம். புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது வந்து புதுசு கிடையாது அரசியலுக்கு. சுதந்திரம் இந்தியா கிடைச்ச போது எல்லாருமே புதிய மினிஸ்டர்ஸ் தான். அதனால புதியவர்களை வந்து நம்ம கம்மியாகவும் இடப்பட வேண்டாம், ரொம்பவும் எதிர்பார்க்க கூடாது. என்ன நடக்குமோங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நீங்க தானே ஓட்டு போட்டீங்க, நீங்க தான் அது நல்லபடியா நடக்குதாங்கறத நீங்க தான் கவனிக்கணும், நாங்களும் கண்காணிக்கிறோம். சிரிப்போட தான் சொன்னாரே தவிர நாங்க ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து பொறாமப்பட்டது கிடையாது. போட்டி போடுவோம் பட் பொறாமப்பட்டது கிடையாது. We are the best sportsman you can find in Tamil Nadu. அது நாங்க சினிமா துறையில இருக்கோம், நாங்க கிரிக்கெட் விளையாடி இருந்தாலும் இப்படித்தான் இருந்திருக்கோம்.
0: Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu announced cash incentives for families having more children, saying that the state must act to reverse its declining population growth trend. Addressing a public meet, Naidu said that the state government would provide ₹30,000 for the birth of the third child and ₹40,000 for the fourth one. The TDP said that this policy is being brought in to boost the falling fertility ratios in the state. The Congress has hit out at Andhra Pradesh government's move and has criticized the decision, questioning the practicality of such a policy. The government population move is being seen to encourage higher birth rates amid a sharply falling total fertility rate and declining rural family sizes.
17: We had adopted national policy of having two children, and that was how it was propagated and advertised in the entire country. Now if somebody is advising against him, it is not only him, earlier also there

0: सिंह क्रिमिनल लॉयर है तो इस वजह से उसको सारे बचाव का सब तरीका पता होगा, सारी किस तरह से बचा जाता है। तो उसने क्राइम किया है, शुरू में तो कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी, शुरू में नहीं, एक दो महीने बाद वो टॉर्चर करने लग गया था। शादी को 5 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए मेरी बेटी को अभी। वो उसकी जो कपड़े भी उसने नहीं खोले, उसे जब तक तैयार कुछ एंजॉय नहीं कर पाई, कहीं गई नहीं वो 5 महीने में ही उसने पागल हो गई। 30 साल से मेरे साथ में, जब पागल ही थी वो, तो पढ़ी लिखी नहीं है तू, जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए है, वो लंदन जाने वाली थी, अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी में काम करेगी, बाहर जाएगी, उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी, तू गंवार है तू, तेरे को बोलना नहीं आता। हम तो दोनों को सजा चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं।
1: Earlier in the day, Trisha's father and cousins spoke to NDTV describing their ordeal. Listen.
2: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
3: यस मैडम, एब्सोल्युटली। द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट द कॉल दैट शी इज नो मोर, द 3 वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर, द फैमिली केम हियर, एंड आफ्टर कमिंग हियर ऑल वी आर सीइंग, ऑल वी हैव विटनेस्ड इज हॉरर व्हेन वी सॉ द डेड बॉडी ऑफ माय सिस्टर, द इंजरीज दैट शी वाज कैरिंग, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the women commission, the mahila thana, the human rights commission, the office of the commissioner of the police, we were made to run from pillar to post, and it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered, that too in a very shoddy manner. Thereafter we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening the courts are getting changed? There must be some certain reason behind it.
2: Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
4: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं।
2: जी,
4: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कहीं पर, इसको आप जो है, हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे, जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचककर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो MP के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी

0: का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूं और इसको क्रिमिनेट कर दूं ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये गॉड PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
1: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurated the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
2: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
3: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटिया लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
2: About 70 kilometers from Patna, the project is designed to deliver affordable eye care to undeserved communities while also creating a strong rural healthcare and training network. The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
3: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai business ke sath sath mein ki seva hi sadhna hai, aur seva hi sadhne ke mantra ke sath sath hum hamara har prayas is tarah se rahega ki khali business ke liye hum yahan nahi aaye, uske sath sath mein hum seva karte hain to wo hamare ko andar ki khushi aur milti hai.
2: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.
1: We are stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.

0: तेरे को बोलना नहीं आता। हम तो दोनों को सजा चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को सजा चाहते हैं।
1: Earlier in the day, Trisha's father and cousins spoke to NDTV describing their ordeal. Listen. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी।
2: यस मैडम, एब्सोल्युटली। द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट द कॉल दैट शी इज नो मोर, द थ्री वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर, द फैमिली केम हियर, एंड आफ्टर कमिंग हियर All we are seeing, all we have witnessed is horror when we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the national, the women commission, the mahila thana, the human rights commission, the office of the commissioner of the police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered, that too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening? The courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
1: Navnidhi ji, मैं आपके पास आना चाहूंगी। परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
3: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं
1: जी।
3: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा, अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे, गलत डिसीज़न हो जाता है कहीं पर, इसको आप जो है, हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे, जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको ले के जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचक्कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएँ। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है तीन से पाँच डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये गॉड पीएम टू के लिए जाने वाली है। तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को माइनस फोर में रखा गया है।
1: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurate the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
4: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
5: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट तीन महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटिया लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
4: अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना, द प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू डिलीवर अफोर्डेबल आई केयर टू अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग रूरल हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग नेटवर्क। The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
5: Adani Group का एक मंत्र भी रहा है बिजनेस के साथ साथ में कि सेवा ही साधना है, और सेवा ही साधने के मंत्र के साथ साथ हम हमारा हर प्रयास इस तरह से रहेगा कि खाली बिजनेस के लिए हम यहाँ नहीं आए, उसके साथ साथ में हम सेवा करते हैं तो वो हमारे को अंदर की खुशी और मिले।
4: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.
1: We are slipping into a very short break. News and updates continue on the other side.
6: Days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
7: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
6: They are now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Dikwad sahab, aise mat kijiye. Suddenly people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about to do.
8: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
6: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
7: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
1: Actor Rajnikanth has made a striking political remark, saying he would have won the 2021 elections had he contested. He clarified he holds no jealousy towards Tamil Nadu Chief Minister Vijay, but noted that expectations from Vijay remain significant among the people of Tamil Nadu. Rajnikanth further underlined that his personal friendship with Chief Minister M.K. Stalin goes beyond political lines. His remarks come at a time of shifting political narratives in the state, where new alignments and rising figures continue to reshape the political landscape.
9: 100% vetivettu per adra doubt ekada 100%.

0: population is under control. But northern states have not followed and their population is more. But this BJP government wants to make use of this wrongful doing of the northern states.
1: देखिए आबादी को लेकर पहले भी ये चिंता रही है कि बहुत सी जगह आबादी बढ़ रही है, बहुत सी जगह घट रही है. तो जहाँ घट रही है वहाँ उसमें आंध्र प्रदेश भी है. तो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने तौर पे स्कीम बनाई है और सरसंचालक जी ने भी कहा था कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए. तो देश में सबको 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए.
2: देखिए ये इस तरह के ऐलान हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी होते हैं और राजनेता भी अलग अलग फॉर्म में करते रहते हैं. ये बयान भी एक उसी क्रम में आया है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता. वजह क्या है कि हिंदू जो है गर्भ में बच्चों को मार रहा है. अगर उसे पता चल जाए कि लड़की है पेट में तो गर्भपात करा दिया जाता है. जब हिंदू खुद अपने बच्चे को पेट में मारेगा तो जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद उससे कैसे की जा सकती है.
3: Well, with that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: And this is the Prime Minister Modi's joint briefing with the EU chief and the Swedish Prime Minister. Prime Minister has thanked Sweden for Royal Order of Polar Star. Prime Minister says that the India-Sweden tie is built on democratic values. Both nations see innovation as driver of growth, elevating ties to strategic partnership with Sweden. FTA is a new opportunity for investors and innovators. We thank Sweden for support during Pahalgam. The Prime Minister also says that Sweden too has zero tolerance for terror.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा

0: undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed? There must be some certain reason behind it.
1: Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
2: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं।
1: जी,
2: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कहीं पर, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे, जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको ले के जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचककर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएँ। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये गॉड PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
1: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurate the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
3: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
4: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियाँ लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
3: About 70 kilometers from Patna, the project is designed to deliver affordable eye care to undeserved communities while also creating a strong rural healthcare and training network. The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.

0: And this is the Prime Minister Modi's joint briefing with the EU chief and the Swedish Prime Minister. Prime Minister has thanked Sweden for Royal Order of Polar Star. Prime Minister says that the India-Sweden tie is built on democratic values. Both nations see innovation as driver of growth, elevating ties to strategic partnership with Sweden. FTA is a new opportunity for investors and innovators. We thank Sweden for support during Pahalgam. The Prime Minister also says that Sweden too has zero tolerance for terror.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।

0: what makes the codes getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the codes are getting changed. There must be some certain reason behind it.
1: Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी। त्विषा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
2: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं।
1: जी,
2: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कहीं पर, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचक्कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त हैं, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएँ। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी जबकि इनको पता था कि ये गॉड PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया।
3: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurate the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
4: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
5: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियाँ लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशंस इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
4: About 70 kilometers from Patna, the project is designed to deliver affordable eye care to undeserved communities while also creating a strong rural healthcare and training network. The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
5: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai, the business ke saath saath mein, ki seva hi sadhana hai. और सेवा ये साधने के मंत्र के साथ साथ हम हमारा हर प्रयास इस तरह से रहेगा कि खाली बिजनेस के लिए हम यहाँ नहीं आए, उसके साथ साथ में हम सेवा करते हैं तो वो हमारे को अंदर की खुशी और मिले।
4: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.
3: We are stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.

0: तो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने तौर पे स्कीम बनाई है, और सरसंचालक जी ने भी कहा था कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, तो देश में सबको 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए।
1: देखिए, ये इस तरह के ऐलान हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी होते हैं और राजनेता भी अलग अलग फॉर्म में करते रहते हैं। ये बयान भी एक उसी क्रम में आया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वजह क्या है कि हिंदू जो है गर्भ में बच्चों को मार रहा है। अगर उसे पता चल जाए कि लड़की है पेट में, तो गर्भपात करा दिया जाता है। जब हिंदू खुद अपने बच्चे को पेट में मारेगा, तो जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद उससे कैसे की जा सकती है?
2: Well, with that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: when we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered. That too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested. The proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
1: Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी। त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
2: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं।
1: जी,
2: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कहीं पर, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की देखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएँ। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
3: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurated the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
4: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore Rural Vision Care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.

0: young workforce for the future. And that is the reason why we have, the government has announced, the Honorable CM had announced, that every family which has a third child will be given a financial assistance of 30,000, and a family having a fourth child will be given a financial assistance of 40,000.
1: That is wrong first. But what will he do? When we followed, strictly followed this Government of India's family planning plan scheme, the northern states did not follow that. But southern states strictly followed it, and our population is under control. But northern states have not followed, and their population is more. But this BJP government wants to make use of this wrongful doing of the northern states.
2: देखिए, आबादी को लेकर पहले भी ये चिंता रही है कि बहुत सी जगह आबादी बढ़ रही है, बहुत सी जगह घट रही है। तो जहाँ घट रही है वहाँ उसमें आंध्र प्रदेश भी है। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने तौर पे स्कीम बनाई है, और सरसंघ चालक जी ने भी कहा था कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। तो देश में सबको तम 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए।
3: देखिए, इस तरह के ऐलान हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी होते हैं और राजनेता भी अलग अलग फॉर्म में करते रहते हैं। ये बयान भी एक उसी क्रम में आया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वजह क्या है कि हिंदू जो है गर्भ में बच्चों को मार रहा है। अगर उसे पता चल जाए कि लड़की है पेट में, तो गर्भपात करा दिया जाता है। जब हिंदू खुद अपने बच्चे को पेट में मारेगा, तो जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद उससे कैसे की जा सकती है?
4: Well, with that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching. Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
5: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
6: Let's do it. Let's do it. Let's start.
7: Big news that we're breaking first here on NDTV.
8: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
7: We've got a picture of the letter. The breaking story, we're jumping.
4: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. Second CNG hike in 2 days in Delhi NCR. Delhi CNG rate crosses rupees 80 per kg for the first time. Politics mount over NEET paper leak. Opposition ups the ante against Education Minister Dharmendra Pradhan, demanding his resignation. Actor Rajnikanth wishes good luck to Tamil Nadu Chief Minister Vijay, says he would have won 2021 polls had he contested, says people have a lot of expectations from the new Chief Minister. Politics over Madhya Pradesh High Court's Bhotshala temple verdict. Congress slams BJP, says Saffron Party only stirring a communal divide. This is the Prime Minister Modi's joint briefing with the EU chief and the Swedish Prime Minister. Prime Minister has thanked Sweden for Royal Order of Polar Star. Prime Minister says that the India-Sweden ties built on democratic values. Both nations see innovation as driver of growth, elevating ties to strategic partnership with Sweden. FTA is a new opportunity for investors and innovators. We thank Sweden for support during Pahalgam. The Prime Minister also says that Sweden too has zero tolerance for terror.
9: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
4: माय कॉलीग गजाली जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। गजाली, द की टेकअवेज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस।
6: See, first of all, he starts off by thanking the Swedish government for honoring him with the highest civilian award there. And then he talks about the business, the trade opportunities after the India-EU FTA. And it has the stamp of the EU president as well, because she was also in the audience there. They all addressed the group of around 60 CEOs of European companies. After that, Prime Minister also spoke about that how the relationship between the two countries have been elevated to a strategic partnership, and where will both the countries will move forward on key pillars such as green transition, defense, emerging technologies and people-to-people ties. And Prime Minister also spoke about the climate challenge, saying that the cooperation between India and Sweden in the Arctic region is also making an important contribution to global climate understanding. He spoke about industries, innovation, investors, that for all these stakeholders, the India-EU FTA will open multiple doors, opportunities in the Indian territory. And at the end, he spoke about the issue of terrorism. We know that Sweden was also heavily impacted due to the emergence of ISIS back a decade earlier, back in 2014 and 15 and 16. In those years, Sweden was also impacted by ISIS. So Prime Minister expressing his gratitude to the Swedish government for extending its support during the Pahalgam attack. Prime Minister reminded them of that, recalled it, expressed its gratitude, and also said that both countries condemn terrorism. So recalling the issue of Pahalgam, besides talking about trade ties and also how India-EU FTA is going to benefit the entire European Union, the entire region of Europe, as well as India.
4: Ghazali, please continue to stay with us on the broadcast. And that's an important point that Ghazali highlights of what the Prime Minister spoke about Sweden's support during the Pahalgam attack. Let's listen in to what the Prime Minister said.
9: आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
4: Ghazali, a broader perspective from you. This is a five-nation tour. You tracked all the developments that happened in Netherlands as well. The broader messaging that the Prime Minister is taking to the Western world, and what are the likely key takeaways that we must look forward to?
6: See, one thing that the Prime Minister's visit has served is that he is not differentiating between the two regions of West Asia and Europe. His first leg of the visit to UAE, identifying UAE as one of the key partners amid all the crisis developing there in West Asia, and then moving to Europe. So there is no bifurcation or sort of a division that he is giving more importance to one region over the other. The second point of this entire, relevance of this entire visit is that he is not just identifying or visiting those countries with which we have excellent relations, but he is also visiting many other countries of the European Union to forge new ties. So with Sweden, or let's say with Netherlands, we know that it is one of the largest investors, or biggest investors in the entire European Union as a member country. But even during the visit in Netherlands, Prime Minister was looking for new sectors through which we can have deeper collaboration. We often hear in the MOUs, in the statements, in the joint press communique, that perhaps the traditional sectors of trade and energy would be the focus of the talks. But in certain countries, Prime Minister had also spoken about people-to-people and cultural exchanges. And the relevant example of that was how the Netherlands authorities had decided to hand over the Chola dynasty or copper plates of the from the Chola dynasty period. So this certainly shows that we have good relations. Prime Minister's visit is only building upon that. And here, the last statement when it comes to terrorism, that is also a diplomatic statement, because after Operation Sindoor, and as we are marking 1 year to that entire operation, that how India wants to isolate Pakistan at global level by creating awareness of Pakistan's involvement in Pahalgam. That is why there have been multiple terror incidents with which India has faced in the last few years. But Pahalgam being one where India wants to sort of raise accountability, to establish accountability by isolating and naming Pakistan. That is why Prime Minister spoke about the Pahalgam incident, also expressed its gratitude to not just Sweden, but it was a broader message to the entire European Union, since the Commission President was also there on the stage.
4: Thank you, Ghazali, for putting that into perspective. And as you rightly pointed out, that was a broader message to the European partners who were present there. A desperate late-night phone call, a daughter in distress, and then silence. This is the story of Twisha, a 33-year-old who told her mother about the harassment she was facing at a matrimonial home, before abruptly disconnecting the call when her husband entered the room. Within minutes, her family's panic turned into horror. Repeated calls went unanswered, and soon came the chilling message. Twisha was not breathing. Now, a post-mortem report citing multiple anti-mortem injuries has deepened the mystery around her death, as grieving family members demand justice and unbiased investigation. The post-mortem report stated that Twisha died due to anti-mortem hanging by ligature, indicating she was alive at the time of hanging. It also recorded multiple anti-mortem injuries on different parts of her body. Twisha's mother-in-law, Giri Bala Singh, a retired judge, is under scrutiny after the family's alleged harassment, delayed response, and fears of influence with the investigation. Twisha's brother, Major Harshit Sharma, who's serving army, said that Twisha was forced to terminate her pregnancy and questions were raised on her character. As we speak, the husband and the mother-in-law of Twisha are out on anticipatory bail. Twisha's father has called the bail unfair, saying that the legal background of the family is protecting the in-laws.
10: Singh criminal lawyer hai, to is wajah se usko sare bachav ka sab tarika pata hoga sari. Kis tarah se bacha jata hai. तो उसने क्राइम किया है शुरू में तो कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी शुरू में नहीं एक दो महीने बाद वो टॉर्चर करने लग गया था शादी को 5 महीने हुए हैं 5 महीने हुए मेरी बेटी को अभी वो उसकी जो कपड़े भी उसने नहीं खोले उसे जब तक तैयार कुछ एंजॉय नहीं कर पाई कहीं गई नहीं वो 5 महीने में ही उसने पागल हो गई 30 साल से मेरे साथ में जब पागल ही थी वो पढ़ी लिखी नहीं है तू जबकि मेरी बेटी MBA किए हुए है वो लंदन जाने वाली थी अनपढ़ लड़की जर्मन कंपनी में काम करेगी बाहर जाएगी उसको इंग्लिश नहीं आती कुछ भी तू गंवार है तू तेरे को बोलना नहीं आता हम तो दोनों को सजा चाहते हैं मेरी बेटी को न्याय मिले और समर सिंह और गिरीवाला सिंह की दोनों को हम सजा चाहते हैं
4: Earlier in the day, Twisha's father and cousin spoke to NDTV describing their ordeal. Listen. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
11: यस मैडम, एब्सोल्युटली। द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट वी कॉल दैट शी इज नो मोर, द थ्री वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम अजमेर, द फैमिली केम हियर, एंड आफ्टर कमिंग हियर all we are seeing, all we have witnessed is horror. When we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the national, the women commission, the mahila thana, the human rights commission, the office of the commissioner of the police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered, that too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
4: Navnidhi ji, मैं आपके पास आना चाहूँगी। परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियाँ थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
12: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं
4: जी।
12: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा, अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे, गलत डिसीज़न हो जाता है कहीं पर, इसको आप जो है, हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे, जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो MP के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये गॉड PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
4: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation inaugurate the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran district. Take a look at the special report.
13: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
14: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता ये लास्ट तीन महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है किस तरह से काम कर रहे हैं और हम काफ़ी प्रभावित हुए जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियाँ लोग इतने काम कर रहे हैं जो डेडिकेशन है तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
13: About 70 kilometers from Patna, the project is designed to deliver affordable eye care to undeserved communities while also creating a strong rural healthcare and training network. The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
14: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai business ke sath sath mein ki seva hi sadhna hai aur seva hi sadhne ke mantra ke sath sath hum hamara har prayas is tarah se rahega ki khali business ke liye hum yahan nahi aaye uske sath sath mein hum seva karte hain to wo hamare ko andar ki khushi aur
13: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.
4: We are stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.

0: a financial assistance of 40,000.
1: That is wrong first. But what will he do? When we followed, strictly followed this Government of India's family planning plan scheme, the northern states did not follow that. But southern states strictly followed it, and our population is under control. But northern states have not followed, and their population is more. But this BJP government wants to make use of this wrongful doing of the northern states.
2: देखिए आबादी को लेकर पहले भी ये चिंता रही है कि बहुत सी जगह आबादी बढ़ रही है, बहुत सी जगह घट रही है. तो जहाँ घट रही है वहाँ उसमें आंध्र प्रदेश भी है. तो चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने तौर पे स्कीम बनाई है, और सरसंचालक जी ने भी कहा था कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए. तो देश में सबको 3 बच्चे कम से कम पैदा करना चाहिए.
3: देखिए ये इस तरह के ऐलान हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी होते हैं, और राजनेता भी अलग अलग फॉर्म में करते रहते हैं. ये बयान भी एक उसी क्रम में आया है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता. वजह क्या है कि हिंदू जो है गर्भ में बच्चों को मार रहा है. अगर उसे पता चल जाए कि लड़की है पेट में, तो गर्भपात करा दिया जाता है. जब हिंदू खुद अपने बच्चे को पेट में मारेगा, तो जनसंख्या बढ़ने की उम्मीद उससे कैसे की जा सकती है.
4: Well, with that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching. So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and I tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
5: Happy meeting NDTV team here.
4: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. Second CNG hike in 2 days in Delhi NCR. Delhi CNG rate crosses rupees 80 per kg for the first time. Politics mount over neat paper leak. Opposition ups the ante against Education Minister Dharmendra Pradhan, demanding his resignation. Actor Rajnikanth wishes good luck to Tamil Nadu Chief Minister Vijay, says he would have won 2021 polls had he contested, says people have a lot of expectations from the new Chief Minister. Politics over Madhya Pradesh High Court's Bhotshala temple verdict. Congress slams BJP, says Saffron Party only stirring a communal divide.

0: And this is the Prime Minister Modi's joint briefing with the EU chief and the Swedish Prime Minister. Prime Minister has thanked Sweden for Royal Order of Polar Star. Prime Minister says that the India-Sweden tie is built on democratic values. Both nations see innovation as driver of growth, elevating ties to strategic partnership with Sweden. FTA is a new opportunity for investors and innovators. We thank Sweden for support during Pahalgam. The Prime Minister also says that Sweden too has zero tolerance for terror.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन के संबंध